मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो चुके हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस

0: ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हे माँ, आप जगजननी हैं। आपके दर्शन से, आपके पूजा अर्चना से हम सबके कष्ट दूर होते हैं। आप बड़ी ही दयालु हैं माँ। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए।

स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया है।

0: अभी आप लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और हरि ओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी।

0: हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
5: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
0: प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गांधी जी का एक पत्र विद्यार्थी के नाम। इस पत्र में उन्होंने खादी और पठन पाठन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।
1: शुद्ध खादी संबंधी शिकायत बहुत पुरानी है। मोटी खादी को लेकर जो असुविधा होती है वो स्वराज्य की खातिर अथवा कहें कि भूखों मरते भाई बहनों की खातिर सहन की जानी चाहिए। मोटी खादी का घुटने तक का जांघिया या एड़ी तक पाजामा पहना जाए तो कपड़े की भी बचत हो और धोने में भी आसानी हो। धोती मद्रासी ढंग से अर्थात काछड़ी बिना पहनने से आधा कपड़ा बच जाता है। किसी गुजराती को अपने मन में ऐसा भ्रम अथवा द्वेष अथवा अभिमान नहीं करना चाहिए कि वो मद्रासी ढंग से धोती नहीं पहन सकता। और फिर यदि विद्यार्थी ये महसूस करता है कि उसे मजबूरन मोटी खादी पहनना पड़ता है तो इसमें उसी का दोष है। क्या वो अपने लिए महीन सूत नहीं काट सकता? यदि वो ऐसा करे तो रुई और बुनाई की मजदूरों की एवज में उसे महीन धोती मिले और खुद मेहनत करने से जो आत्मसंतोष होता है सो अलग हो। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी ये न कहें कि उसे पठन पाठन से कातने का समय ही नहीं मिल पाता। अनुभव से वो देखेगा कि उसका ज़्यादा समय आलस्य में अथवा व्यर्थ के काम में चला जाता है।

0: उसमें से वो थोड़ा समय निकाल ले और काते, इतना ही काफी है। एक अंग्रेजी कहावत है जिसका मतलब है जहां चाह वहां राह, और हमारे यहां कहावत है कि नाचना न चाहे तो आंगन टेढ़ा। शुद्ध खादी का प्रयोग न करने के लिए सैकड़ों बहाने मिल जाएंगे। जिन्हें खादी के प्रति श्रद्धा है उनके आगे एक भी मुश्किल नहीं आती।
1: चरखा राष्ट्र की समृद्धि और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह वाणिज्यिक युद्ध का नहीं बल्कि वाणिज्यिक शांति का प्रतीक है। यह पृथ्वी के राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना का संदेश नहीं देता है बल्कि सद्भावना और स्वसहायता का संदेश देता है। इसका पहिया हर क्रांति शांति सद्भावना और प्रेम की तरह घूमता है सबके साथ। अगर हमारे अंदर खादी की भावना है तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सादगी के साथ खुद को घेर लेंगे। खादी भावना का अर्थ है असीम धैर्य। जो लोग खादी के उत्पादन के बारे में कुछ भी जानते हैं वे जानते हैं कि बुनकरों को अपने व्यापार में कितनी धैर्य से मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ तक कि स्वराज का धागा बुनते समय हमें भी धैर्य रखना चाहिए। खादी भावना का अर्थ है समान रूप से असीमित विश्वास। खादी भावना का अर्थ है पृथ्वी पर हर इंसान के साथ सहभावना। इसका अर्थ हर उस चीज़ का पूर्ण त्याग करना जो हमारे साथी प्राणियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। मैं अपने भारत को जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो कैसे इसका प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। खादी केवल महंगी प्रतीत होती है पर महंगी नहीं है। ये तो मेहनत के धागों से बनाया हुआ हमारा बल है। बापू का कहना था, मुझे विश्वास है कि हाथ की कताई और हाथ की बुनाई का पुनरुद्धार भारत के आर्थिक और नैतिक उत्थान में सबसे बड़ा योगदान देगा। कताई वर्षों पहले कुटीर उद्योग था। अगर हमें अपने आप को भुखमरी से बचाना है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें अपने घरों में कताई को फिर से शुरू कर देना चाहिए। गांव को अपने बुनकरों को फिर से हासिल करना होगा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम, आइए सुनते हैं वृक्षारोपण से पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ विषय पर डॉक्टर सौम्य बहादुर से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत।

0: किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ बाग बागवानी भी लगावथिन। ई जौन समय चलत बा वो वृक्षारोपण के लिए बहुत ही उपयुक्त समय चलत बा। आज जौन बातचीत के विषय बा वही बा कि वृक्षारोपण से पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ का का होता है, ये पे बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बाटिन सौम्या बहादुर जी जौन की जानकार बाटिन है। सौम्या बहादुर जी आपके कार्यक्रम में स्वागत बा। आप हमारे किसान भाइन के बतावें कि अगर वो वृक्षारोपण करथिन तो खास करके पर्यावरण के का लाभ होता और एक अलावा किसान भाइन के आर्थिक लाभ का होता, एक बारे में कुछ बतावें आप।
1: पहला फायदा तो जैसे हम सब जानते हैं कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं
0: जी,
1: जिसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं।
0: हुँ।
1: दूसरा फायदा ये है सबसे बड़ा कि जो बड़े बड़े हार्मफुल गैसेज होती हैं जो फैक्ट्री के धुएं से निकलती हैं, कारों से निकलती हैं या सब जगह से निकलती हैं, उसको वृक्ष एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: और बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि शहर में आज हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है, अगर हम वृक्ष लगाते रहेंगे तो ये नहीं होगा, लंग कैंसर नहीं होगा। आज ऐसा होता है कि 4 साल के 5 साल के बच्चे को भी लंग कैंसर हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जिस तरह से पर्यावरण को नाश कर रहे हैं उसकी वजह से।
0: तो अगर का कहते वृक्षारोपण ज्यादा हो तो ये जोन बाटे जो बताए कैंसर,
1: हाँ
0: फेफड़े वाला जो
1: फेफड़े का कैंसर
0: ई ना हो।
1: जी जी।
0: एकरे अलावा और कुछ बताऊं?
1: जी जी। एक इसके अलावा जो है जैसे कि पेड़, हमको अगर हम पेड़ रख रहे हैं तो हम मधुमक्खियों का पालन कर सकते हैं, मधुमक्खी पाल सकते हैं उसमें, जिससे कि हमको काफ़ी आर्थिक लाभ होगा। शहरों में बहुत अच्छे दाम पे जो इस तरह की मधुमक्खियां जो पाली होती है, जो फ्री फ्री एयर में पलती हैं, जो अलग अलग तरह के पेड़ों का फूल से अपना मधु बनाती हैं, उनको बहुत अच्छा माना जाता है और उनको बहुत महंगे दामों पे खरीदा जाता है।
0: हाँ।
1: इसके अलावा पेड़ अलग अलग तरह के पेड़, जैसे कि शीशम का पेड़ है, ये भी लगाया जा सकता है जिससे कि फर्नीचर बनता है। आज एक एक पेड़ जो 20-20 साल का, 25 साल का होता है, वो 50,000 से भी ज्यादा में मिलता है।
0: अच्छा,
1: सागवान का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, जो कि सीधे ऊपर जाते हैं, तो खेत में लगाने के बाद अगर हम जो बाउंड्री बनाते हैं उसकी, हम इन पेड़ों की बनाएंगे, तो अगर आज हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ और हमने पेड़ लगा दिए, समझ लीजिए 50-60 पेड़ लगा दिए, तो जब वो बच्चा 20 साल का होगा या 22 साल का होगा, उसकी पढ़ाई के लिए हमको जो है अलग से पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, यही पेड़ काट करके
0: जी, जी।
1: इनको हम बेच करके और इनके बच्चों का अपना फ्यूचर बढ़िया कर सकते
0: लाभ
1: हैं, आर्थिक लाभ कर सकते हैं।
0: एक बात बतावाएं कि पर्यावरण के हिसाब से अगर वृक्ष लगावा जाते तो कितना फायदा हो सकता है, ऑक्सीजन के अलावा और का का फायदा हो सकता है?
1: आपको जो आज देख रहे हैं कि मानसून फेल हो जाता है, पानी
0: हाँ।
1: नहीं बरस रहा है, 49 डिग्री तक टेम्परेचर शहरों का जा रहा है, गांव में
0: जी।
1: तो तभी भी उतनी गर्मी अभी नहीं पड़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से ये हो रहा है मानसून फेल हो जाएगा, पानी नहीं बरसेगा अगर आपने पेड़ सारे काट दिए, पेड़ की वजह से
0: कहीं ज्यादा बाढ़ आ सकता, कहीं सूखा पड़ सकता।
1: बाढ़ भी इसीलिए आती है क्योंकि पेड़ की जो वो रहती है, जड़ रहती है, वो मिट्टी बांध के रखती है, तो जब आपका पानी आता भी है तो आपके लैंडस्लाइड नहीं होता, आपके यहाँ जो जैसे कहते हैं ना जमीन नहीं खिसकती है, अगर आपके पास ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, अगर आपने सारे पेड़ काट दिए तो आपकी पूरी पूरी जमीन ही खिसक जाती है, आपके नीचे से पानी सब कटान होने लगती है।
0: जी,
1: बिना पेड़ों के तो बारिश भी नहीं होगी और हम रह भी नहीं पाएंगे।
0: अच्छा अच्छा। आज जोन बाटे है बड़ा बड़े पैमाने पे ग्लोबल वार्मिंग की बात होते बाटे है।
1: जी जी।
0: ये कितनी गंभीर समस्या बा, वृक्षारोपण अगर किसान भाई करें तो एक दूर करे में का भूमिका हो सकते, एक बारे में भी कुछ बताओ आप।
1: अब शायद मुझे तो लगता है किसान भाइयों के ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ की, क्योंकि शहरों में तो जिस तरह से काटा जा रहा है पेड़ों को, उसके हिसाब से तो जल के मर जाएंगे लोग, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे जल के मर जाएंगे। 49 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर, पेड़

0: को काटने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जितने कारखाने बन रहे हैं, जितनी हम लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो एरोप्लेन से इधर उधर जा रहे हैं, उसमें इतना कार्बन इमिशन कर रहे हैं कि अब एक मोटी सतह कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर लगी हुई है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ गया है, इसकी वजह से गर्मी और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सूरज की किरणें अंदर आती हैं, बाहर वापस नहीं निकल पा रही हैं, तो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर गर्म होता जा रहा है। आज ये हाल हो गया है कि आर्कटिक, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती थी, वहां पे भी बर्फ नहीं है, वहां पे आग लग रही है, उसके साथ साथ वहां मच्छर, लोगों ने कभी सुना नहीं था अपने जीवन में कि आर्कटिक पे, आर्कटिक एरिया में मच्छर हो, और वहां पे मच्छर पहुंच गए हैं, और कितने कितने बुरे पैमाने पे, मतलब जो सी लाइफ जैसे कहते हैं, समुद्री जनजीवन है, वो इतनी बुरी तरह से मर रहा है, कितनी मछलियां मर रही हैं, वो सब तो हम अपनी आंख से देख रहे हैं।
1: जी सही कहा बाटिन आप। एक बात यह चर्चा में आवा था कि ओजोन परत भी नष्ट होत बाटे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो पेड़ हमें भी अपन भूमिका निभा सकते
0: हैं। जी बिल्कुल,
1: काहे से तापमान इतना तेज बढ़ा जात है, परावैगनिक किरण जो सीधा चली आवत है, तमाम तरह के रोग बीमारी भी फैलावत है, खास करके जब बताए कैंसर भी है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, जो चर्म रोग होत उकरे वजह से, एकरे बारे में भी कुछ बताऊं या जो
0: क्या होता है कि एक ब्लैंकेट की, ब्लैंकेट इफेक्ट कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऊपर का ये बन गया है, और ओजोन की एक परत होती है जो हमारे यहाँ, हमारे पृथ्वी पे हजारों सालों से है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो आ नहीं पाती हैं पृथ्वी पे, लेकिन ये जो एमिशन हो रहा है जिस तरह की गैसेस का, CFC खास तौर से, इसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो गया है। अभी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सबसे बड़ा छेद है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा स्किन कैंसर हो रहा है। अगर हम पेड़ लगाएंगे और हम जो है ये सब गैसेस का इमिशन कम करेंगे, और हम लोग धीरे धीरे करके, मतलब जहां तक मेरी सोच है, मुझे तो लगता है पुराने जो जनजीवन था उसमें हम लोग कम नुकसान कर रहे थे। अगर हम बड़ी गाड़ी खरीद ले रहे हैं और उसके बदले में कैंसर हो जा रहा है हमारे आधे परिवार को या हमारे 4 साल के बच्चे को, तो इससे अच्छा तो ये है कि हम छोटी गाड़ी में अपना रखें, या तो फिर हम बैलगाड़ी रखें, लेकिन कैंसर ना हो किसी को।
1: एक ही बात भी हो सकता है कि हम ज्यादा कम से कम मौका चलाई जोन बाटे, अगर है बाटो भाई, अगर गाड़ी तो जरूरत पड़े चलाओ जाए, बाकी सब प्रकृति का इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। एक बात और बतावा कि आर्थिक रूप से क्या लाभ हो सकता है हमारे किसान भाई के, चूँकि किसान भाई अगर कोनो भी काम करते हैं तो उनका भी आर्थिक लाभ भी हो चाहे, तो मैं वृक्षारोपण से क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में बताऊँ।
0: पहले तो सागवान और शीशम जैसे पेड़ जो सीधे सीधे जाते हैं, उनको लगाएं अपने खेत में, जैसे खेत के चारों तरफ बाउंड्री करने के लिए, जिससे आपके उसका सूरज भी ना छुपे और आपका जो है पेड़ों को प्रॉपर सनलाइट भी मिलती रहे, और आपको 20-25 साल बाद उसको काट करके आपको पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएं, लाखों में मिलते हैं सागवान और शीशम के अभी भी। उसके अलावा अगर आप मधुमक्खी का पालन भी कर सकते हैं, आपने अगर आपने इमली के पेड़ लगाए हैं, नीम के पेड़ लगाए हैं, इन सब में आप मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं। हम तो आपसे यहाँ तक ये भी कहेंगे कि छोटे छोटे पेड़ जैसे कि एलोवेरा होता है, अश्वगंधा होता है, या आपका और भी सिट्रनेला जिसे कहते हैं, ये सब भी पेड़ अगर किनारे किनारे लगाते रहिए, तो इससे ना सिर्फ कीटनाशक होता है ये, बल्कि इसको बाद में आप इस्तेमाल करके मार्केट में बेच भी सकते हैं।
1: अगर जो खाली जमीन में फलदार पेड़ लगाओ तो उसे भी आर्थिक लाभ बढ़िया हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, फलदार पेड़ लगाने से
1: पर्यावरण के भी फायदा करे,
0: चिड़िया आती है उससे, चिड़िया का जो आजकल हम देख रहे हैं कि गांव में, शहरों में सब जगह चिड़िया गायब हो गई हैं। अगर फल के पेड़ लगाते हैं तो जो फल खराब भी हो जाते हैं वो फल पे जो है चिड़िया आकर के रहती है, तो चिड़िया, चिड़िया रहेगी तो पेड़ रहेंगे, तो मधुमक्खियां रहेंगी, तो फूल रहेगा। जब हम इनमें से एक को भी खत्म कर देंगे तो हमारा सब कुछ, पूरा पूरा चेन खराब हो जाएगा।
1: एकरे अलावा भी देखा जाए तो जो पुराने पेड़ रहन किसान भाई अब ना ही लगवते न, काफ़ी उसे भी पर्यावरण को फायदा होत रहा है, इमारती लकड़ी मिलत रही, खास करके शीशम रहा, महुआ रहा, अब एक बड़ा कम देखे में आवत लोग लगावत हैं, तो ये सब भी पेड़ लगावे के चाहे किसान।
0: महुआ का तेल मैं आपको सच बताऊं, आजकल 1000 रुपये लीटर तक भी मिल रहा है, शहर में लोग ले रहे हैं। महुए के जो बीज का तेल होता है उसको मीठा तेल, रिफाइंड ऑयल जो होता है वो हेक्सेन से एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका, तो वो केमिकली ट्रीटेड रहता है।
1: जी जी,
0: तो उसकी जगह महुए के बीज का तेल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हजार रुपए लीटर तक भी मिलता है, और उसको मीठे तेल की तरह इस्तेमाल करते हैं।
1: बहुत अच्छा होता रहा, हम लोग भी बचपन में उसका इस्तेमाल कह रहे, महुआ बीनत रहे। भी और भी जोन पेड़ बाटे ना, जहाँ भी जगह बा, चाहे झाड़ीदार हो या का कहा थी ना आप बताएं कि लंबा लंबा जोन पेड़ हो थी, उनका भी लगाए से फायदा हो सकता है, तो उसे पर्यावरण भी फायदेमंद रहे, और हमारे का कहा थी जमीन कटाव भी ना, उपजाऊ जमीन जो है अगर पेड़ लगाए रहे तो कटाव भी ना हो। और भी का कुछ बतावे चाहिए इसके बारे में, कुछ
0: जी मैं कुछ और भी बताना चाहूंगी। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आयुर्वेद में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आपका अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन के पेड़ है, अमलताश का पेड़ है, आपका आंवले का पेड़ है, ये सब भी अगर आप साथ में लगाइए तो आप अपना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे शहर में भी दे सकते, जैसे हम लोग खुद खरीदते हैं सब चीजों को, और काफी महंगे दामों पे मिलता है। हार्ट की दवा के लिए जो दवा जितनी है, ये आपकी एलोपैथ होती है, उसमें सब में साइड इफेक्ट होता है। अब अर्जुन किसी को दे रहे हैं, अर्जुन की बार्क को आप उबाल करके दे रहे हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हार्ट के बड़े बड़े ब्लॉकेज भी निकल जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, और का लगा सकते, किसान भाई लाभ हो सकता है बताओ आप।
0: जी, अर्जुन है आपका, अश्वगंधा है।

0: है, एलोवेरा है, ये सब तो
1: हाँ
0: छोटे पेड़ हैं, एलोवेरा,
1: जी
0: अश्वगंधा,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: आपका तुलसी, जैसे दो तरह की तुलसी होती है, श्याम तुलसी है, सफ़ेद तुलसी है,
1: हाँ,
0: वो
1: तुलसी से
0: लगा
1: भी
0: सकते
1: फायदा
0: हैं.
1: ले सकते
0: जी
1: हैं
0: जी जी
1: आप।
0: जी वो वायरल डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी है. सिट्रोनेला करके एक है आपका, जो लेमन ग्रास कहते हैं, वो
1: हाँ
0: अभी लगाते हैं, उसमें कहते हैं कीटनाशक प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: लोग जितना भी जो मतलब पर्यावरण से अच्छा जो वो बनाते कीटनाशक बनाते हैं, उसमें उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका
1: एक
0: तेल
1: बात
0: निकाल
1: और आवे
0: करके.
1: था, किसान भाई फूल के खेती के कई के भी जोन बाटे अच्छा फायदा ले सकत है ना, पर्यावरण के भी फायदा हो
0: जी जी
1: सकत
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल
1: कहा अगर गेंदा के खेती की ही जाए तो मच्छर भी नहीं लगत,
0: जी
1: एकरे बारे में भी कुछ बताओ
0: जी
1: यार।
0: गेंदा की खेती हो सकती है आपकी, गुलाब की खेती हो सकती है, गुलाब को भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, दवा में भी इस्तेमाल होता है, गुलाब का इत्र बनता है, और उसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, गेंदा का होता है, लैवेंडर होता है, और भी कई सारे फूल हैं जो बाहर से भी आप ला सकते हैं. और आपका जो कैमोमाइल टी जिसको बनाते हैं, जर्मन कैमोमाइल, वो भी मेरे कुछ किसान भाइयों ने कोशिश की है उसको लगाने की, और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए हैं. तो उसकी ट्रेनिंग होती है, कई जगह
1: अच्छा
0: ट्रेनिंग
1: अच्छा
0: होती है, नेचुरल
1: अच्छा
0: ट्रेनिंग, तो
1: अच्छा
0: इसको देख करके आप लोग कर सकते हैं.
1: तो सौम्या बहादुर जी, आप आइन वृक्षारोपण से पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ का होत है, एक बारे में बहुत अच्छे से बताएं। आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे वृक्षारोपण से पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ विषय पर डॉक्टर सौम्य बहादुर से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव की वार्ता, रूट कनाल ट्रीटमेंट की उपयोगिता।
1: रूट कनाल ट्रीटमेंट या RCT, ये नाम हम सबने कई बार अपने दंत चिकित्सक या मित्रों से अवश्य सुना होगा। इस उपचार की विधि से हम अपने खराब कीड़े लगे दांतों को पुनः ठीक करा सकते हैं। वह बिना दांत निकाले उसी दांत पर RCT के उपरांत हमारे दंत चिकित्सक क्राउन या कैप लगाकर मजबूत कर देते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि दांतों में काढ़ा या कीड़े लगने की शिकायत एवं दर्द होने पर हम अपने दंत चिकित्सक से जांच करवाते हैं तो वो हमारे दांतों का एक्सरे करते हैं व RCT या रूट कनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। ऐसा करने से हमारे दांत और ज़्यादा खराब होने से बच जाते हैं व समय पर इलाज होने से दांत को निकालना नहीं पड़ता। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दांतों का स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे तभी हम भोजन को अच्छे से चबाकर खा पाएंगे। अच्छी तरह चबा हुआ भोजन हमारी आंतों में जाकर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलने में सहायता करता है व भोजन के आवश्यक तत्व हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचेंगे व हम स्वस्थ एवं निरोगी रहेंगे। यदि किन्हीं वजहों से हमारे दांतों में कैविटी या गड्ढे कीड़े लग जाते हैं तो हमें शीघ्र से अपने दंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए व समय रहते अपने दांत के डॉक्टर से दांतों में फिलिंग करवानी चाहिए। यदि किसी कारण से समय पर कैविटी का इलाज नहीं हो पाता तब कुछ समय बाद यही कैविटी और डीप या गहरी हो जाती है व उसमें खाना फंसने लगता है व शुरुआत में ठंडा व गर्म पानी की शिकायत रहती है जो कि धीरे धीरे दर्द में तब्दील हो जाती है। कुछ समय पश्चात दांतों में अत्यधिक दर्द महसूस होने लगता है व भोजन करने पर जब दांत से दांत लगता है तो बहुत दर्द का एहसास होता है। कभी कभी मसूड़ों में सूजन, यहाँ तक कि पस या मवाद भी आने लगता है। ऐसे में पहले के समय में जब दंत चिकित्सा उतनी एडवांस नहीं थी तब डॉक्टर दांत उखाड़ देते थे, परंतु रूट कनाल ट्रीटमेंट की आधुनिक विधियों से हम अपने दांतों को फिर से ठीक करवा के अपने मुख एवं शरीर के स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं। RCT या रूट की कनाल ट्रीटमेंट को आम भाषा में दांतों की नसों की सफाई भी कहा जाता है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें दांतों में होने वाली दर्द का संपूर्ण इलाज हो जाता है व दांतों का स्वास्थ्य बना रहता है। इस विधि में हमारे दंत चिकित्सक सर्वप्रथम हमारे दांतों का एक्सरे लेते हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि दांत कितना खराब हुआ है व इन्फेक्शन कहाँ व किस नस तक फैला है। इस प्रकार वो हमें सबसे पहले सुन का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हमें दर्द ना हो और धीरे धीरे मशीन के जरिए वो दांतों की सभी नसों की सफाई कर देते हैं। उसके बाद हमें बहुत आराम मिलता है। कभी कभी उसी दिन दांतों को भर भी दिया जाता है या कभी एक दो दिन की ड्रेसिंग चेंज की जाती है, उसके बाद दांतों में फिलिंग कर देते हैं नसों को बंद करके मजबूती के

0: लिए उसमें ऊपर से कैप या क्राउन लगा दिया जाता है और आपका दांत उखड़ने से बच जाता है। इस प्रकार रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने से हमारे दांत हमेशा स्वस्थ रहते हैं और उसमें कीड़े नहीं लगते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव की वार्ता, रूट कनाल ट्रीटमेंट की उपयोगिता स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:00 सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर कमला बोस का गायन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर ज्योति आनंद के स्वर में भजन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। 10:30 पर लोकगीत में कलाकार होंगे वंदना सरोज, ओमकार नाथ और कमलेश्वर सिंह गहमरी। सुबह 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार।

दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस, दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिएगा, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी निकहत और प्रीति यादव की विश्व योग दिवस पर विशेष बातचीत। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5:00 नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर दीप्ति विष्णु की वार्ता योगः कर्मसु कौशलम्। रात 8:30 पर अक्षयवट कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर से दीपक कुमार राय की बातचीत। विषय होगा बुजुर्गों के लिए लाभप्रद है योगा। रात 10:00 राजेंद्र तिवारी का लिखा नाटक सुनिएगा अपने अपने चक्रव्यूह। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 202.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत यद् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः

0: ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गतदशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा दशरथ के आंगन में शिशु रूप श्री राम की क्रीड़ा देखते हुए काकभुशुंडी पर माया का प्रभाव होता है। कौतूहल जनित भ्रम से काकभुशुंडी को आश्चर्यचकित देख श्री राम मुस्कुराए। हाथों और घुटनों के बल चलते हुए वे कौवे को पकड़ने दौड़े। कौवा उड़कर भाग चला। मुड़कर देखा तो श्री राम की भुजा उनके ठीक पीछे, मानो अभी उसे पकड़ लेगी। काकभुशुंडी आकाश में जिधर उड़ते, भुजा उनके ठीक पीछे। उड़ते उड़ते काकभुशुंडी ब्रह्मलोक पहुंच गए, फिर भी भुजा ठीक पीछे उतने ही पास। सातों आसमान पार कर काकभुशुंडी जहां भी गए, पीछे मुड़कर देखा तो वही परिदृश्य। और तब भयभीत होकर उन्होंने आंखें मूंद ली। जब आंखें खुली तो फिर अपने को अयोध्या में पाया। श्री राम ठठाकर हंस पड़े। उनके मुंह खोलते ही काकभुशुंडी बरबस उसमें प्रविष्ट हो गए। पेट में जो पहुंचे तो वहां अनेक ब्रह्मांड परिलक्षित हुए।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन, लीजिए सुनिए नीलकमल फिल्म का ये भजन। आशा भोसले की आवाज़ में संगीत दिया है रवि ने और रचना है साहिल लुधियानवी की।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए गोपी फिल्म का ये भजन, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने, और रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

अभी आपने सुना गोपी फिल्म का ये भजन, और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया, कहा किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग्स के जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक, चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदूखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
1: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वह सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही है।
1: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली, पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए, यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। वो अयोध्या नगर निगम की कुल 291 करोड़ रुपए की लागत वाली 245 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। योजना के तहत प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ।

0: हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड UPATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े बुलंदशहर जिले से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में थे। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के सहित नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में MSME के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स SME फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और MSME के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आंकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत कल लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों का सुपोषित होना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 जून तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की भी संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज और कल, जबकि पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक। चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कमला बोस का ख्याल गायन, राग है नट भैरव।

अभी आप सुन रहे थे कमला बोस का ख्याल गायन, राग था नट भैरव, आपके साथ तबला संगत कर रहे थे अनूप कुमार बनर्जी, हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग,
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग,
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
6: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
6: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
5: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
7: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैं इसे साथ दौरे के लिए स्वागत कर

0: हंस और बरक की दोस्ती अमर राय।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
2: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और

0: पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट्स है।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वही नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम अज कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमरीका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी कि तिजारत है।
1: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
0: जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवीत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियो में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाज़े था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअस्सर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन बरसों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजोर मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है।
2: Priez mes frères Narenda, Mouji Baoud Kouchi, oui Abka Nice, Evian, Paris. Mani se sadre daure kelie, swagat karke, France au Barat ki dosti amarai.
0: पेश है वज़ीर-ए-आज़म के पेरिस के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निकार की एक रिपोर्ट।
3: पेरिस में नीस में भारत इनोवेट्स और वीवा टेक 2026 का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। वीवा टेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तिजारत, तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरगर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबों में और ज्यादा शमूलियत के मंसूबों का

0: ऐलान भी किया। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीबात से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाबता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
0: मस्कुर स्कीम कारकुनों और आजिरों की बाजाबता मईशत में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की खातिर तैयार की गई है। इसके तहत पहली बार के मुलाजमीन 15,000 रुपए तक की तरकीब हासिल करने के अहल होंगे। इस तरह उन्हें अफरादी कुव्वत में शामिल होने पर अहमियत की हामिल मदद मिलेगी, जबकि इजाफी रोजगार के मौके दस्तियाब कराने वाले आजिरों को हर इजाफी मुलाजिम रखने पर 3,000 रुपए माहाना तक की तरकीब मिल सकेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पिछले साल यकुम अगस्त को नाफिज हुई थी। इसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने को फरोग देना और मईशत के सभी शोबों में सोशल सिक्योरिटी दायरे को वसत देना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया गया है। इसका मकसद 2 साल के अरसे में मुल्क में मुलाजिमत के 3.5 करोड़ से ज्यादा मौके दस्तियाब कराना है। दिल्ली से प्रिया मॉन्डल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। साल 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। गुजरात में इस मौसम गर्मा के सीजन के लिए 18,250 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। मंजूरशुदा सरकारी खरीद की कम अज कम इमदादी कीमत की मालियत 160 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने रबी मार्केटिंग सीजन के तहत तमिलनाडु के लिए मूंग की सरकारी खरीद की हद 885 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी है। इस तरह फसल की 105 मैट्रिक टन इजाफी सरकारी खरीद हो सकेगी। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के लिए मौसम गर्मा के सीजन के दौरान 2115 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मजकूरा दिन सिकल सेल की बीमारी SCD के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन बीमार अफराद को लाहिक चैलेंजों को उजागर किया जाता है और बेहतर तहकीक, फंडिंग और मुसावियाना इलाज व मुआलजे की हिमायत की जाती है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत ओडिशा के 2 रोजा दौरे के लिए आज दोपहर मयूरभंज जिला पहुंचेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मयूरभंज जिले में अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अवामी फलाह बहबूद, देही तरक्की और कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। रायरंगपुर में सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर की जानिब से मुनाकिद एक हेल्थ कैंप पहुंचेंगी और देही इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी से मुतालिक एक बड़े मरबूत प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए खसूसी सर्किट हाउस और नए तामीरशुदा रायरंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का भी इफ्तिताह करेंगी। आकाशवाणी भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आज से शुरू होने वाली योग के बैनुल अक्वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए वहां के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। ये जनाब राधाकृष्णन का मरकज के जेर इंतजाम इलाके का पहला सरकारी दौरा होगा, जो इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान

0: सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में डाकिया की क्या भूमिका होती है। एक ऐसे व्यक्ति की जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व था। एक समय था जब लोग उस व्यक्ति का इंतज़ार किया करते थे। जी हाँ श्रोताओं, हम बात करने जा रहे हैं पोस्टमैन की। डाकिया जो सिर्फ लोगों की चिट्ठी ही नहीं बल्कि बहुत सारी खुशियाँ उम्मीदें लाता था। चिट्ठी सिर्फ एक कागज़ नहीं बल्कि लोगों की भावनाएं होती थी। उस चिट्ठी में लोग उसके आने पर अपने घर के दूर रह रहे रिश्तेदार संबंधियों का हालचाल जानने के लिए उत्सुक रहते थे। डाकिया हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। वह एक सरकारी कर्मचारी होता है जो डाक विभाग के माध्यम से लोगों तक संदेश पत्र और पार्सल पहुंचाने का काम करता है। वह केवल पार्सल और संदेश पत्र मनी ऑर्डर घर पहुंचाता है बल्कि लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने और सरकारी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक विश्वसनीय माध्यम है। डाकिया खाकी रंग की वर्दी पहनता है और कंधे पर चिट्ठियों का भरा थैला लेकर चलता है। भले ही आज इंटरनेट और मोबाइल का युग है, फिर भी डाकिया महत्वपूर्ण दस्तावेज डाक जीवन संबंधी कार्य पूरी निष्ठा से करता है। चाहे कड़ाके की ठंड हो, भीषण गर्मी हो या मूसलाधार बारिश हो रही हो, हर मौसम में डाकिया अपनी साइकिल पर या मोटरसाइकिल से सवार होकर अपने कार्यक्षेत्र पर समय से पहुँच जाता है।

आज के इस डिजिटल युग में भले ही लोग फोन द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं, लेकिन वो चिट्ठी वाला समय श्रोताओं उसकी तो बात ही अलग रहती थी। आज फोन पर भले ही ढेरों बातें लोग करते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं चिट्ठियों में झलकती थी, उसकी तो बात कुछ और ही थी। दूर दराज इलाकों में, गांवों में जहां इंटरनेट या संचार के आधुनिक साधन पूरी तरह सुलभ नहीं है, वहां डाकिया एकमात्र माध्यम है। डाकिया हमारे जीवन का आधार है। पहले की तुलना में बेशक डाकिये अब कम ही दिखाई देते हैं, परंतु आज भी डाकिया हमारे सरकारी दस्तावेजों को हम तक पहुंचाते हैं। लोग आज घर बैठे अपने सगे संबंधी से बात कर रहे हैं। वीडियो कॉल पर चेहरा देखकर बातें करना, हालचाल पता करना आम हो गया है। लेकिन जब यह सारी सुविधाएं नहीं थी, तब लोगों को अपने दूर दराज रहने वाले रिश्तेदारों और सगे संबंधियों का हाल जानने के लिए एक सप्ताह 10 दिन तक लग जाते थे, क्योंकि जब डाकिया आता था तभी हम लोगों को उनकी जानकारी होती थी कि वो कैसे हैं, क्या हाल है, क्या हो रहा है। एक डाकिया सालों साल एक ही इलाके में सेवा देता है, जिससे उसका स्थानीय लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। गांव और छोटे शहरों में वे आज भी एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति माने जाते हैं।

डाकिया वह कड़ी है जो अपनों को मीलों दूर रहकर भी दिलों के करीब रखती है। हर मौसम की मार सहकर जो घर घर खुशियां पहुंचाए वह डाकिया ही है जो निस्वार्थ भाव से फर्ज निभाए। पत्रों और संदेशों के माध्यम से जो दूसरों के जीवन में मुस्कान लाए वही असली सामाजिक सेवक है। मौसम चाहे सर्दी का हो चिलचिलाती धूप का, डाकिया अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता। जैसे हर मौसम का अपना एक रंग होता है वैसे ही डाकिया हर घर में सुख दुख का एक संदेश होता है। डाकिया का आना हमें सिखाता है कि धैर्य और ईमानदारी से किया गया छोटा काम भी समाज के लिए बहुत बड़ा होता है। श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: से मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए तेरे नाम फिल्म का ये गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में संगीत दिया है हेमेश रेशमिया ने और रचना है समीर की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए प्रेम रोग फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाज़ों में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और रचना है संतोष आनंद की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रेम रोग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पूछे जाने वाले कुल 33 प्रश्नों के सही एवं सटीक उत्तर उपलब्ध कराएं, क्योंकि इन आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों की रूपरेखा तैयार की जाती है। साथ ही नागरिकों से ये भी अपेक्षा की गई है कि वे परिगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें, जिससे ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य सुचारू, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान चल रहा है। अभियान के अंतर्गत कुल 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। प्रथम कार्यक्रम के रूप में विश्व पर्यावरण दिवस एवं एक पेड़ माँ के नाम थीम के तहत जनपद में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। जनपद स्तरीय मुख्य कार्यक्रम वन विभाग एवं जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वावधान में शांति वन बबराला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई एवं मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हरी संकरी वृक्षारोपण करते हुए पीपल, बरगद एवं पाखड़ के पौधे रोपित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक गिन्नौर अजीत कुमार, राजू यादव तथा नगर पंचायत बबराला के अध्यक्ष हर्षवर्धन बासणे द्वारा त्रिवेणी वृक्षारोपण के अंतर्गत पीपल, बरगद एवं नीम के पौधे लगाए गए। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं बल्कि मात्र सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जनपद संबल के लिए वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग तथा नगर विकास विभाग के सहयोग से 456,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे 100% पूर्ण कर लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सैनी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय संबल परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत नीम, अर्जुन एवं गुलमोहर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया तथा अस्पताल परिसर से श्री शंकर चौराहे संबल तक जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। सड़कों पर होने वाले हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए मदद करने वालों के लिए अब मददगार नहीं राहगीर नाम से पुकारा जाएगा। रास्तों या हाईवे पर होने वाले हादसों में मृत्यु दर कम करने एवं घायलों को तत्काल मदद पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में राहगीर गुड सैमिट रिटर्न योजना लागू की गई है। इस योजना का मकसद लोगों को मदद के लिए प्रेरित करना और उन्हें सम्मानित करना है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर यानी कि हादसे के तुरंत बाद का सबसे महत्वपूर्ण समय के भीतर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले मददगारों गुड सैमिटन के लिए ये अहम पहल की है। प्रदेश में अब ऐसे मददगारों को राहगीर के नाम से जाना जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली इनामी राशि को 5,000 रूपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रूपए कर दिया गया है। राहगीर योजना के अंतर्गत 5 शर्तों के आधार पर 25,000 रूपए का इनाम राहगीर को दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में यूपी में स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड सेमे रिटर्न को राहगीर योजना के रूप में लागू किया गया है। जनवरी 2025 से लेकर अब तक के मददगारों का डेटा जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। विकासखंड गिन्नौर के ग्राम बागाऊ में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा एक जनपद 5 नदियों थीम के अंतर्गत मंत्रोच्चारण एवं पूजा अर्चना के साथ जनपद में एक जनपद 5 नदियों के अंतर्गत जल संरक्षण, जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विलुप्त प्राय एवं अस्तित्वहीन होती जा रही नदियों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बर्दमार नदी के पुनरोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नदी की पुरानी पहचान को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य अतिक्रमण हटाने, खुदाई, पौधारोपण तथा अन्य संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत भी कार्य कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। संबल में जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का शुभारंभ हवन एवं आहुतियों के साथ किया गया। योगाचार्य ने निरंतर योग करने से शरीर में पनप रही तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलने का विश्वास दिलाया। जनपद संबल में चंदोसी, भेजोई, संबल, बबराला, गिन्नौर, असमौली के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में योग दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। अलग अलग स्थान पर सरकार के निर्देशन अनुसार योगाचार्य ने योग के आसन कराए, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे।
1: संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद का।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जनपद भ्रमण पर आए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिनका लाभ आम जनता को पहले कभी नहीं मिल रहा था। डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले कांग्रेस के कार्यकाल में मनमानी होती थी, आज भाजपा के कार्यकाल में हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसान

0: को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ उत्साह जन भागीदारी एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ किया गया। जनपद के विभिन्न स्थलों पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा आमजन ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कैंप कार्यालय परिसर में मौल श्री का पौधारोपित करते हुए कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं बल्कि जीवन संवेदना और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के प्रतीक हैं। उन्होंने जनपद वासियों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विगत दिनों नगर स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह पहुंचकर स्थापित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन तथा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ व विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने संप्रेक्षण गृह में निवासरत किशोरियों से आत्मीय संवाद कर उनके जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों को शैक्षणिक किट प्रदान करते हुए कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का आधार है। उन्होंने बेटियों से आह्वान किया कि वे नियमित अध्ययन के साथ साथ विभिन्न रोजगार परक एवं कौशल आधारित गतिविधियों में भी दक्षता प्राप्त करें जिससे वे भविष्य में ससम्मानजनक एवं स्वावलंबी बन सकें। मानसून और संभावित बाढ़ संकट को देखते हुए रामसनी घाट तहसील प्रशासन ने कोयला और खेरी तटबंध पर व्यापक आपदा प्रबंधन मार्ग ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान बाढ़ जैसी आपात परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया। मार्ग ड्रिल में नदी में नाव पलटने, लोगों के डूबने, पशुओं के पानी में फंसने तथा बाढ़ से उत्पन्न अन्य आपात स्थितियों का वास्तविक प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों और पशुओं को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संसाधनों की उपलब्धता की भी जांच की गई। SDM अनुराग सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विगत दिनों नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय देश एवं विश्व के लिए अनेक चुनौतियों भरा हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां भी मानवीय संकट का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में मानवता की सेवा एवं राहत कार्यों में सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। जिलाधिकारी ने नागरिक सुरक्षा संगठन में चयनित चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, स्टाफ ऑफिसर, वार्डन सेवा तथा सेक्टर वार्डन पदों पर नियुक्त स्वयं सेवकों को बधाई देते हुए उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शासन के निर्देशानुसार जनपद में 5 जून से 21 जून तक व्यापक स्तर पर समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं, विकास कार्यों, सुशासन की उपलब्धियों तथा आम जन के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत आयोजित सभी कार्यक्रम सेवा, सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप जन केंद्रित, प्रभावी एवं सहभागिता पूर्ण हो। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में 15 से 21 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे योग सप्ताह का शुभारंभ रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज JIC ऑडिटोरियम बाराबंकी में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति सतीश चंद शर्मा द्वारा दीप प्रज्वल कर एवं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग प्रशिक्षकों, छात्र छात्राओं, अधिकारियों एवं आम जन ने सहभागिता की।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं।

0: खड़े हो जाया करते थे
1: जी।
0: उनके बारे में आपने फरमाया कि फातिमा बिज़अतु मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी है कि बाकायदा जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे तो दोनों अपनी नमाज़ों को अपने शाने में बिठा के लेके जाते थे, और उनके कहने पे कि इनकी सवारी आवाज़ निकाल ली तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज़ निकालते थे
1: जी।
0: यानी आप गौर करें कि ये वो हस्तियाँ हैं कि जिसके लिए रिसालत खुद सवारी बन गई है।
1: बहुत अच्छा कह रहे हैं आप कि अहले बैत से मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना हैं। इस्लामी तारीख में उनका मकाम और मर्तबा निहायत बुलंद है, क्योंकि उन्होंने दीन की खिदमत, अखलाकी क़ियादत और कुर्बानियों के ज़रिए उम्मत की रहनुमाई की है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर सैयद महफूज अली साहब मौजूद हैं। महफूज साहब, एक सवाल आपसे करेंगे यहाँ पर कि अहले बैत ने दीन इस्लाम की हिफाजत और फरोग के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की, आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं?
2: अहले बैत अतहार ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं वो सारी कायनात में बेमिसाल है और नायाब है, और आज तक उनकी कुर्बानियों के नतीजे में पूरी दुनिया उससे इस्तफादा कर रही है, फ़ायदा उठा रही है, और कायनात के हर इंसान को अहले बैत की कुर्बानियों का कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच रहा है। और अहले बैत अतहार सलामुल्लाह अलैहिम जो खानवादे रसालत हैं, अगर तारीख में देखा जाए तो जो सबसे बड़ी मिसाल है जिसको एक बच्चा भी जानता है, वो मिसाल कुर्बानी करबला है, जो एक अजीम कुर्बानी है। और ये कुर्बानी हमें बताती है कि अगर किसी मेराज पर, किसी बुलंदी पर या इंसानियत को आला मकदार पहुंचाना है तो उसके लिए कुर्बानियां ज़रूरी हैं।
1: बहुत अच्छा कहा आपने कि अहले बैत की कुर्बानियाँ दीन इस्लाम से बेमिसाल वफादारी और हक पर इस्तिकामत की अलामत हैं। कमर साहब, एक सवाल और आपसे करेंगे। अहले बैत की तालीमात मुख्तलिफ कौमों में इत्तिहाद और मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग देने में किस हद तक मुअस्सर साबित हो सकती है?
0: अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमेशा इत्तिहाद के लिए कहा है, और जिसकी बहुत सारी मिसाल तारीख में है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अय्याम अज़ा हैं। इस महीने में सारे कौम के लोग, सारे मज़हब के लोग, हर जगह के लोग, हर इलाके के लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं, और हम उस प्लेटफॉर्म को हुसैनी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह कोई इख्तलाफ नहीं होता है। और आप गौर करें तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हर आदमी अपने आप को हुसैनी कहता है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, किसी भी कौम का हो। तो हमें इस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जमा कर दिया है कि जहाँ पे हर कौम, मज़हब, मिल्लत और फिक्र के लोग जमा हो गए। इत्तेहाद की इससे बड़ी और कोई मिसाल नहीं हो सकती है। ये इत्तेहाद तमाम इंसानों के दरमियान में है, लेकिन ये हुसैनियत का इत्तेहाद एक ऐसा इत्तेहाद है जहाँ पे जमा नहीं करना पड़ता है, लोग खुद आके जमा होते हैं, और एक नारा होता है, एक परचम होता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी की आज ये नतीजा निकल के सामने आ रहा है कि हर इंसान जमा है। इसके अलावा भी दीगर मकामात पे जो तारीख़ में मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दूसरी कौम के लिए भी बहुत से काम किए। जैसे आपने बहुत सारे कुएं खोदे, कभी आपने ये नहीं देखा कि उसमें पानी पीने वाला कौन नहीं, बस एक इंसान होना चाहिए। बहुत सारे दरख्त लगाए गए, और इसी तरह से खुद हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने किसी को ये नहीं बताया था शुरू में कि मैं रसूल हूँ, बल्कि लोगों ने उनकी इंसानियत का कलमा पढ़ा।
1: बहुत ही उम्दा बात आपने कही है कि अहले बैत की तालीमात मोहब्बत, रवादारी, अदल और एहतराम इंसानियत पर मबनी है। एक सवाल महफूज साहब से करेंगे। महफूज साहब, अहले बैत की कुर्बानियों से हमें इज्तिमाई और इनफरादी जिंदगी में क्या अमली दुरुस्त हासिल होते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से हमें अगर इनफरादी ज़िंदगी में देखा जाए तो ख़ुद इंसान मुसीबतों पे सब्र करे, उसके अलावा जब भी बात अपनी हो और अपनी कुर्बानियों की बात हो और किसी को सुकून पहुंचाने का सबब बने हमारा सब्र, हमारी कुर्बानी, तो उसमें दरेग नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा इंसान वही है कि जो बग़ैर क़ैद मज़हब व मिल्लत के किसी भी इंसान को मजबूर परेशान हाल देखे तो अपनी तकलीफ़ भूल कर अपने आराम की कुर्बानी दे कर उसकी मदद करे, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। खुद इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को दफन करके आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई रो रहा है, तो आप अपने बाप का गम भूल कर उसकी अहवाल पुरसी के लिए हाजिर हो गए और उसकी मदद की, और उसके बाद जो तफसीलात है वो सबको पता है, मुझे अर्ज नहीं करना। और इज्तमाही ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने, खुद रसूल खुदा ने

0: हैं, ये सारी मेहनत है रसूल की जिसकी वजह से ये हम तक पहुंची है। अगर आप किसी चीज की उजरत नहीं देंगे तो वो चीज आपके लिए जायज नहीं है। तो इबादतों का ये सिलसिला अहले बैत की मोहब्बत की उजरत के बगैर भी हलाल नहीं है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके अहले बैत से मोहब्बत, हमें अहले बैत का एहतराम, उनसे अकीदत और उनके नक्श कदम पर चलने का दर्स देती है। कमर साहब से एक सवाल करेंगे। कमर साहब, अहले बैत के अखलाक व किरदार को मौजूदा मुआशरती हालात में आप किस तरह अपना सकते हैं?
2: सबसे अहम जिम्मेदारी मुसलमानों की यही है कि वो अहले बैत के किरदार और अखलाक को अपनाएं, क्योंकि किसी भी मज़हब का आईना उसका अखलाक है, उसका किरदार है। अगर आज के ज़माने में हर मुसलमान अहले बैत के अखलाक व किरदार को अपना ले तो मेरा मानना यह है कि उसे कहीं भी जलील रुसवा नहीं होना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस ज़माने में हम अहले बैत के किरदार और अखलाक से दूर हो गए हैं। आज जो सारी नाकामियां और परेशानियां आ रही हैं उसकी असल वजह यह है कि हमारी जो हकीकत है उससे दूरी। बाज़ औक़ात होता है गुस्से में आदमी बोल रहा होता है तो हम उसके ज़ाहरी लफ्ज़ को सबसे पहले देखते हैं कि उसने ऐसा बोला, हम ये नहीं देखते कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। हो सकता है उसके साथ कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो। तो अहले बैत की ज़िंदगी सबसे पहले तो हमें इस बात का दर्स देती है कि जब भी आपके पास कोई आए, भले हो सकता है वो तेज़ मिजाज में या तुंद मिजाज में बात कर रहा हो आपसे या तेज़ लहजे में बोल रहा हो, तो हम उसको लहजे को सिर्फ ना देखें बल्कि उसके दिल के दर्द को भी समझने की कोशिश करें। और जिस दिन हम एक दूसरे के दर्द को समझने लगेंगे, हम हकीकत में उस हदफ को समझ लेंगे कि जो हदफ अहले बैत हमें देना चाह रहे थे, और वो हदफ है इंसानियत का हदफ। सबसे बड़ा हक जो दुनिया में है वो एक इंसान का एक इंसान पर है। आज के जमाने में अगर हम देखें कि हमें हर चीज मालूम है, हर चीज के लिए आमादा है, हर चीज के लिए तैयार है, अगर हमारे पास नहीं अगर है तो इंसानियत नहीं है। इंसान को इंसान उसका अखलाक किरदार बनाता है, उसकी सूरत नहीं बनाती है। आयत है कुरान में बाकायदा, ये सराहतन अल्लाह ने फरमाया है कि औलाए का कल अनाम बलहुम अजल, कि वो चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं। तो इंसान का किरदार इंसान को इंसान बनाता है, वरना जानवरों से भी बदतर बना देता है।
1: एक आखिरी सवाल हम महफूज साहब से करेंगे। आज के प्रोग्राम के पेश नज़र आपके ख्याल में अहले बैत अतहार की कुर्बानियों से अवामुन नास, खास तौर से उम्मत मुस्लिमा, इत्तेहाद और यकजहती का कौन सा सबक हासिल कर सकती है, और आज हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इसकी वजाहत फरमाएं।
0: सबसे पहले तो यह है कि इत्तेहाद एक ऐसा लफ्ज़ है कि अगर ये कायनात पे हाकिम हो जाए तो कायनात के सारे मुश्किलात और मसाइल हल हो जाएं। और इस्लाम और ये आज का जो प्रोग्राम है इस्लामियात और मुहर्रम के हवाले से, इसमें सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हमें मज़हब और मुल्क व मिल्लत, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके असल मरहले में इंसानियत को अहमियत देने की ज़रूरत है। और उसके अलावा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि तुम जो है हमेशा इत्तेहाद में ज़िंदगी बसर करो। कुछ लोग यहाँ पे मज़हब को बीच में ले आते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम सिर्फ मुसलमान से मोहब्बत करें, जबकि ऐसा नहीं है। मौला ने कहा कि मुसलमान से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हारा हम मज़हब है, लेकिन दूसरे जो मुसलमान नहीं हैं उनसे इसलिए मोहब्बत करो कि वो इंसान हैं, वो तुम्हारे ही वजूद का हिस्सा हैं, क्योंकि हम सब आदम के औलाद हैं।
1: बहुत ही उम्दा पैगाम आपने दिया कि अहले बैत की कुर्बानियाँ हमें इत्तेहाद, उखुव्वत, सब्र और हक पसंदी का दर्स देती हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान जनाब प्रोफेसर कमरुल हसन साहब और जनाब प्रोफेसर सैयद महफूज अली साहब के बेइंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाज़त।

0: उर्दू कार्यक्रम खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: मास्टर जी।

0: ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, लीजिए सुनिए ज्योति आनंद के स्वर में भजन।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का

0: संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद

0: कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे गंगा यमुना की पुकार, प्लास्टिक से करो इनकार। गंगा यमुना तीर्थराज प्रयागराज में स्थित है। साहित्य और गीतों के माध्यम से गंगा यमुना की अविरल धारा और स्वच्छता की पुकार को बार बार उठाया जाता है। इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। गंगा यमुना की पुकार, प्लास्टिक से करो इनकार, यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि हमारी जीवनदायिनी नदियों को बचाने के लिए एक अत्यंत आवश्यक जन आंदोलन है। हमें अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद करना होगा ताकि हमारी पवित्र नदियों को जहर बनने से बचाया जा सके। हर रोज हजारों किलो पॉलीथीन और प्लास्टिक का कचरा बहाया जाता है, जिससे जलीय जंतुओं और हमारी आस्था के केंद्र इन पवित्र नदियों का अस्तित्व खतरे में है।

महासागरों में जो प्लास्टिक के भंडार मिल रहे हैं वह नदियों की देन है। अधिकतर विकासशील देशों में नदियों और उनमें मिलने वाले नालों के किनारे ही प्लास्टिक समेत सारा कचरा जमा होता है। हम नदियों को गंदा कर रहे हैं और नदियां महासागरों को प्रदूषित कर रही हैं। नदियों और नदियों में मिलने वाले नालों के किनारे ही प्लास्टिक समेत कचरा फेंका जाता है। यह प्लास्टिक सीधे हवा के साथ नदियों तक पहुंचता है। नदियों में पानी की बोतलें, पॉलीथीन के थैले और प्लास्टिक की प्लेटें सीधे फेंकी जाती हैं। यह सब पानी के साथ बहकर महासागरों में जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों सहित अन्य तमाम कार्यों में गंगा जल को पवित्र एवं अमृत तुल्य माना गया है। श्रद्धालु गंगोत्री धाम, हरिद्वार,

आदि कई जगहों से गंगा जल लेकर आते हैं और लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं। लेकिन प्लास्टिक कंटेनरों में सहेजा जाने वाला गंगा जल उपयोग करने के बाद हम उसे फेंक देते हैं। 10, 9, 8, 7. आज भी लोग पवित्र गंगा जल के साथ देश विदेश में भ्रमण करते हैं। नित्य प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग श्रद्धा एवं पूजा के नाम पर गंगा को प्रदूषित करते रहते हैं। गंगा न सिर्फ हमारे लिए बल्कि अनगिनत जलीय एवं वन्य जीव जंतुओं के लिए भी जीवनदायिनी है।

आज भारत की एक तिहाई जनसंख्या गंगा के किनारे वास करती है और उनके लिए गंगा नदी केवल पानी का स्रोत ही नहीं अपितु मनुष्य जाति मनुष्य जनित अपशिष्ट कचरे को ग्रहण करने एवं ढोने की प्रणाली भी है।

राज्य के समय में प्रतिदिन 9000 लाख लीटर घरेलू औद्योगिक कचरा गंगा में फेंका जाता है, जो कि बड़ा अनर्थ है। मनुष्य बराबर प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक प्लेटें और बोतलों का उपयोग कर रहा है। जब हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हमें सब्जी, दूध, खाने का कोई भी सामान प्लास्टिक पैकेट में ही दिया जाता है। जब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग, पानी की बोतलें, डिस्पोजल कप का उपयोग बंद करते हैं तो नदियों में जाने वाले कचरे की मात्रा में भारी कमी आती है। यह नदियों के प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता को बनाए रखने में मदद करता है। यह अभियान हमें याद दिलाता है कि यदि हम अपनी नदियों और पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा अपना भविष्य भी अंधकार मैं हो जाएगा। स्वस्थ नदियों को ही स्वस्थ समाज का आधार माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के कारण घर दाह संस्कार, मूर्तियों का विसर्जन और पूजा सामग्री नदी में डालना जैविक प्रदूषण को बढ़ावा देता है। नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम जैसी एकीकृत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को प्रदूषण से बचाया जा सके और प्लास्टिक से बचने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज़रूरी है प्लास्टिक का बहिष्कार करें। अपने दैनिक जीवन में कपड़े के थैले को अपनाएं, पानी के लिए स्टील या तांबे की बोतलों का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के बजाय कांच या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। अभी तो हम बात कर रहे थे गंगा यमुना को कैसे साफ और सुरक्षित रखा जाए, और अब थोड़ी सी बात की जाए

गर्मी के मौसम पर। गर्मी का बढ़ता प्रकोप के कारण सभी लोग परेशान हैं। गर्मी में चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। थोड़ा से दूर पैदल चलने पर शरीर से पसीने तरबतर हो जा रहा है। शरीर गर्मी के कारण शरीर इतना अधिक ऊर्जा रहित हो जाता है कि कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता। गर्मी के कारण घमौरियाँ निकल रही हैं, त्वचा संबंधी अनेक बीमारियाँ भी हो रही हैं। गर्मी का यह मौसम पृथ्वी के बदलते वातावरण की ओर संकेत कर रहा है। अब यह प्रायः देखा जा रहा है कि गर्मी आती है तो पहले की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है। पृथ्वी का मौसम इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।

श्रोताओं, इस कड़ी गर्मी में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चिलचिलाती धूप में गर्म हवाओं से बचने के लिए हल्के ढीले सूती कपड़े पहनें और अपने आहार में ठंडी तासीर वाली चीज़ें शामिल करें। दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, बेल का शरबत शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। दोपहर में जितना हो सके कम से कम निकलें। शाम 4 बजे के बाद घर से बाहर निकलें और

बाहर निकलने, अगर आपको बहुत आवश्यकता है बाहर निकलने की, तो आप अपने चेहरे को कवर करके निकलें, चेहरे को ढककर, चश्मा लगाकर और छाता लेकर ज़रूर बाहर निकलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है लोकगीत। कलाकार हैं वंदना सरोज और साथी ओमकार नाथ, कमलेश्वर सिंह गहमरी। तो पहले आपको सुनवाएंगे वंदना सरोज और साथियों के स्वर में ये लाचारी गीत।

0: अभी आपने सुना वंदना सरोज और साथी के सर में ये कहरवा गीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीत कलाकार हैं ओमकार नाथ। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये देवी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कमलेश्वर सिंह गहमरी के स्वर में ये गंगा गीत। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पेश खिदमत है प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अतुल यादव। आज हम बात करेंगे उस आवाज की जिसने दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया। उस आवाज में वो जादू है जो हर गीत को अमर बना देता है। उस आवाज में प्रेम है, दर्द है, हर भावना है वो जिसे हम महसूस करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पार्श्व गायिका अलका याज्ञिक की, जिन्होंने अपने हर गाने में एक नई कहानी सुनाई है। कुछ कुछ होता है से लेकर ताल तक और कयामत से कयामत तक से लेकर परदेश तक। तो चलिए इस खास सफर पर निकलते हैं जहां हर मोड़ पर होगा एक यादगार गीत।

श्रोताओं, 20 मार्च 1966 कोलकाता में एक गुजराती परिवार में अलका याज्ञिक का जन्म हुआ था। उनकी मां शुभा याज्ञिक एक क्लासिकल सिंगर थी और यही कारण था कि अलका की सुरमई आवाज को सुनकर मां शुभा को यह एहसास हो गया था कि उनकी बेटी सिंगिंग के क्षेत्र में एक दिन बड़ा चेहरा बनेगी। और इसकी झलक अलका ने 6 साल की उम्र में ही दिखा दी थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के लिए गाना

जब अलका 10 साल की हुई तो उनकी माँ उन्हें लेकर मुंबई चली आई, जिससे उनके करियर को चमकाया जा सके, और वो उन्हें लेकर प्रोड्यूसर्स के पास जाने लगी। यहीं से शुरू हुआ संघर्ष और संगीत का सफर, और वो सफर जो सफलता की नई ऊंचाइयां छूता चला गया।

श्रोताओं, एक बार राज कपूर साहब ने नन्ही अलका को कहीं गाते हुए सुना और वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेज दिया। और उसी वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये कह दिया कि एक दिन ये बच्ची बड़ी सिंगर बनी थी। फिर क्या, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यूँ लगता है जैसे दुआएं लग गई थीं।

श्रोताओं, अलका याज्ञिक ने लगभग हर भारतीय भाषा में गाना गाया। लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी के बाद जिस सिंगर के गाने सबसे ज्यादा मशहूर हुए वो अलका याज्ञिक हैं। 90 के दशक में हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म में अलका याज्ञिक की आवाज सुनाई देती थी। अलका याज्ञिक के गाने सुनते हुए वक्त किस तरह से आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता।

आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। हम फिर मिलेंगे कुछ नए गानों के साथ और मीठी यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अब दीजिए इजाजत अतुल यादव को, नमस्कार।

फिल्म संगीत एक ही कलाकार, ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है युवाओं का अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।

ये जो आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ना स्क्रीन पर, उसका एंड पॉइंट कभी नहीं आने वाला है। हाय, इट्स मी पूजा यादव एंड इट्स फ्राइडे एंड ऑफ कोर्स इट्स टाइम फॉर द यूथ एक्सप्रेस।

0: जब आपके अंदर कोई टैलेंट होता है या जब आपके आसपास के लोग ये मानते हैं कि आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, इस पोटेंशियल की वजह से एक बर्डन, एक हैवी सा मेंटल प्रेशर महसूस होने लगता है। इसी बर्डन को बर्डन ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। जब आपके पेरेंट्स, टीचर्स, आपके फ्रेंड्स कहते हैं यार तुम तो बहुत होशियार हो, शार्प माइंडेड हो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, ये सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन अंदर ही अंदर एक डर बैठ जाता है कि अगर मैं फेल हो गया तो तब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आपको हर वक्त लगने लगता है कि आपको अपनी काबिलियत को साबित करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई छोटा सा भी काम कर रहे होते हैं लाइफ में, थोड़ा ठहराव चाहते हैं, तो एक गिल्ट सा होने लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे तो कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

बर्डन ऑफ पोटेंशियल। इस बोझ के नीचे दबा इंसान अक्सर नए कदम उठाने से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ नया नहीं ट्राई किया या फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अरे इसके पास इतना पोटेंशियल था फिर भी कुछ नहीं कर पाया बेचारा। इस फियर ऑफ थिंकिंग से कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। रीजन, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास होती ना, तो हम इस उलझन में फंस जाते कि कौन सा रास्ता चुने जिससे हमारा पोटेंशियल वेस्ट ना हो, और इस चक्कर में इंसान कोई फैसला नहीं ले पाता। पोटेंशियल, काबिलियत एक गिफ्ट है, लेकिन जब आप हर वक्त इस चिंता में जीने लगते हैं कि मुझे अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करना है, तो कहीं ना कहीं ये गिफ्ट हमारा बोझ बन जाता है। तो फ्यूचर के इस ग्रेटनेस को छोड़िए और आज के छोटे छोटे कदमों और प्रोसेस को अप्रिशिएट करना सीखिए।

इमोशनल टचिंग बातें तो काफी हो गई, अब बारी है कुछ दिमागी बातों की। देयर सम डेटा। भारत में हर साल साइबर अपराध के मामलों में 24 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दर्ज होने वाले कुल मामलों में लगभग 70% मामले फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं। रीजन, भारत में इंटरनेट ऑनलाइन पेमेंट की रीच तो बढ़ी लेकिन साइबर लिटरेसी नहीं बढ़ी। साइबर अपराध के आरोप में पकड़े जाने वाले लोगों में 60% से अधिक युवा हैं, जिनकी उम्र 18 से 30 के बीच है। साइबर क्राइम बढ़ने का रीजन सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं बल्कि अवेयरनेस गैप और मोरल डिक्लाइन भी है। हमने साइबर क्राइम के बारे में बात की, आगे हम ये भी जानेंगे कि किन किन तरीकों से हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो की पॉइंट्स आपको पता चलेंगे, लेकिन लेट्स टेक अ म्यूजिकल ब्रेक।

जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे यूथ की इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग पर निर्भरता भी बढ़ रही है। ये जितना इजी टू गोइंग लगता है ना, उतना ही चैलेंजिंग और डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट। आखिर इन सब चीज़ों से हम बचे कैसे, सावधान कैसे रहें। सबसे पहला, आपको लग सकता है कि अरे ये तो बहुत ईजी सी बात पूजा ने बताई है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अपने पासवर्ड में हमेशा कुछ सिंबल या कैपिटल लेटर यूज़ करिए, ताकि हर कोई इजली ये जानना सके कि इसका पासवर्ड तो यही हो सकता है। आमतौर पे होता है ना कि जब भी हम हॉटस्पॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वाईफाई, हम 1 से लेकर 9 तक नंबर डाल देते हैं, एंड इट्स सो सरप्राइजिंग कि कुछ कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। एंड मैंने अक्सर देखा है, आमतौर पर मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आना जाना पसंद करती हूँ, अक्सर लोग पब्लिक प्लेस पर अपने फ़ोन का पासवर्ड डाल देते हैं, तो एक्चुअली लोगों को बहुत ज़्यादा कैची कर जाता है, आपके पासवर्ड कई लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचकर रहना है। डिजिटल अरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन मीडियम के थ्रू डराना, मतलब ऐसे डराया जाता है कि गवर्नमेंट एजेंसी के जरिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको जुर्माना देना होगा। तो ये ब्लैकमेलिंग भी एक तरह से हो सकती है, किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी का नाम लेके आपको डराने की कोशिश करना। तो हमें इसमें नहीं फंसना है, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट एड के जरिए भी हमें समझाने की कोशिश करती है कि सरकारी एजेंसी पूछताछ नहीं करती है, बल्कि वो फेस टू फेस टॉक करती है, उसके बाद कोई कार्रवाई करती है। तो ऐसा कोई भी कॉल आता है कि आपको गवर्नमेंट के थ्रू अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको डरना नहीं है और आपको उनकी बातों में नहीं आना है। देयर इज ऑल्सो सम की पॉइंट, जैसे कि OTP, लिंक बेस्ड, आप अपना OTP शेयर ना करें, और कोई भी लिंक आपको यूजली व्हाट्सएप वगैरह पे भेजा जाता है तो उसे बिना क्रॉस चेक किए आपको ओपन नहीं करना है। QR कोड बेस्ड भी और USB बेस्ड। मैंने अक्सर देखा है कि रेलवे स्टेशन पर खास तौर पर एक यू नो चार्जर वाला पॉइंट रहता है, जिसपे हज़ारों या 100 लोग एटलीस्ट तो एक साथ ही चार्ज कर रहे होते हैं लाइन बाय लाइन। वो चीज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि USB के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होता है, तो चीज़ें हैक बहुत जल्दी हो जाती है। हमें इन सब चीज़ों से बचना है। ये बहुत बेसिक लग सकता है, बट अगर हम इनका ध्यान दें तो साइबर क्राइम से हम बच सकते हैं। एंड अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो आप 1930 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और देयर अ पोर्टल cybercrime.gov.in पर आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो VPN ज़रूर यूज़ करें, और ऑनलाइन शॉपिंग का तो ट्रेंड है नो डाउट, अच्छे ऑफर्स में बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, बट बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही ऑनलाइन शॉपिंग करें। होप सो कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी चीज़ों पर हमने बात की है, आपको पसंद आया होगा। आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो अप करें और हमारी यूथ एक्सप्रेस से ज़रूर जुड़े रहें। कार्यक्रम में क्यों ना अब एक प्यारा सा गीत हो जाए।

कोर्स आपको यूथ एक्सप्रेस पसंद ही आया होगा। हर फ्राइडे को हम ऐसे ही नए नए एंगेजिंग टॉपिक पर बात करते हैं। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 8004926250। और किन और टॉपिक्स पर हम बात करें ताकि हम आपको और एंगेजिंग लगे, प्लीज आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे यानी पूजा यादव को दीजिए इजाजत, बाय बाय।

यूथ एक्सप्रेस, ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित

इस स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरीघाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं

पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कमला बोस का गायन आप सुनेंगे दिन में 12:15 पर और रात 10:30। श्रोता अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश सुनेंगे दिन में 12:30।

1:15 पर महिलाएं अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आज सुनेंगी विशेष रूपक अथ योगानुशासनम। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुनेंगे दिन में 2:30 बजे, शाम 5 बजे नन्ही दुनिया कार्यक्रम होगा, 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे विवेक सिंह की वार्ता प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण, साथ ही आनंद लेंगे ओंकार नाथ के गाए लोकगीतों का।

संस्कृत कार्यक्रम में 7:31 पर आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर दीप्ति विष्णु की वार्ता योगा कर्मसु कौशलम। 7:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसमें भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। कलाकार होंगे सात्विक मिश्र। रात 8 बजे का समय होगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम का।

ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

AIR at 90। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कमला बोस का राग नट भैरव में ख्याल गायन।

0: मेरा।
1: अभी आप सुन रहे थे कमला बोस का ख्याल गायन राग नट भैरव। अब शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैडम, मैं संगम नगरी प्रयागराज हवेलिया झमोसी से महेंद्र नाथ कुशवाहा बात कर रहा हूँ।
0: जी जी महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दादा फिल्म का मैडम, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए।
0: जी जी, ये यशुदास की आवाज में गाना है।
1: हाँ हाँ हाँ मैडम,
0: चलिए तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का गाना। फिल्म का नाम है दादा। जी बोलिए।
1: हाँ मैडम, जो है शुभम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, सीएम कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा, दीपक कुशवाहा।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नितेश आर्या है
0: जी। नितेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है अजनबी, फिल्म का टाइटल।
0: अजनबी फिल्म का टाइटल सॉन्ग की फरमाइश की है नितेश जी ने। तो नितेश जी, आपको गीत सुनवाया जाए?
1: जी मैम।
0: लीजिए सुनिए अजनबी फिल्म का ये गाना।

0: श्रोता सुन रहे हैं इस समय हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: अभिमन्यु।
0: हाँ अभिमन्यु जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है तीसरी कसम।
0: जी,
1: चलत मुसाफिर का मोह लियो पेट वाली मुनिया।
0: राज कपूर और वहीदा रहमान की फिल्म थी ये। तो इसका गीत आपने चुना है, बहुत ही अच्छा गीत है और बहुत दिनों के बाद इस गाने की फरमाइश आई है, अभिमन्यु जी ने की है। तो अभिमन्यु जी, किसी और का नाम तो नहीं लेना चाहते आप?
1: हमारे मित्र हैं ये सिंधी जिला के, मैम नाम साथी लोग हैं कई।
0: जी जी,
1: और सेतु प्रयागराज को
0: हम आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: रेडियो से दोस्ती आकाशवाणी से है प्यार, रेडियो से दोस्ती आकाशवाणी से है प्यार, होठों पे है मुस्कुराहट, चेहरे पे है निखार, जितने कुंडा प्रताप जितने का रहने वाला हूँ, नाम है मेरा राजेंद्र, इसी बात में मधु को हमारा प्यार। नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया राजेंद्र जी ने। तो राजेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है कभी
0: जी,
1: और इसके बोल ही, तेरा फूलों जैसा रंग, तेरा सिलते जैसे रंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं कभी कभी फिल्म का ये गाना।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रही हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार जी।
1: जी
0: रोशनी जी बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोशनी जी। कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है मोहब्बतें और गाने के बोल हैं हमको हमें से चुरा लो।
0: हमको हमी से चुरा लो, और ये ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया हुआ गाना है
1: जी।
0: तो आपकी इस पसंद के गाने को हम सुनवाने जा रहे हैं रोशनी जी, लीजिए सुनिए।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजे हैं, प्रस्तुत है समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
3: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को

0: किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The President was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today.
3: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. India has accused Pakistan of using propaganda to divert attention from its domestic challenges and its continued support for terrorism. New Delhi has strongly rejected Pakistan's allegations on Jammu and Kashmir at the 62nd session of the United Nations Human Rights Council. Speaking at the session, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations, Anupama Singh, asserted that Jammu and Kashmir was, is and will always remain.

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मराद तकसीम करेंगे। वो अमली तौर पर मुल्क भर से मुस्तफीद होने वालों से खिताब करेंगे। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू होने वाली इस स्कीम के तहत 63 लाख से ज्यादा कारकुनान, जिनमें से तकरीबन 30% खवातीन हैं, उनको बाज़ाब्ता अफरादी क़ुव्वत में ज़िम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से मुल्क भर में 15 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस स्कीम के तहत लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ समेत सत के 17 अज़ला में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस स्कीम का मकसद रोजगार की तख्लीक में तेजी लाना, रोजगार की अहलियत में इजाफा और तमाम शोबों में समाजी तहफ्फुज़ की कवरेज को बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा की जड़ें हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी हैं और इसने मुल्क की सरहदों को अबूर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर मुमलिकत प्रताप राव के एक मजमून का इश्तराक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बारे में बात की कि किस तरह कदीम नसूस से लेकर आलमी पहचान तक योगा ने सरहदों को अबूर किया है, जबकि हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी जड़ें हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या धाम और रुदौली असेंबली हलके को करोड़ों के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। वज़ीर आला ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद रुदौली असेंबली हलके में मां कामाख्या धाम नगर पंचायत को 25 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्टों की सौगात दी। साथ ही वीरांगना झलकारी बाई के आलिशान मुजस्मे की नकाब कुशाई के साथ 126 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वज़ीर आला ने अपने खिताब में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। वजीर आला ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर हुकूमत ने SIT तश्कील की है और यह जांच पूरी शफाफियत से होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो उसे SIT को सौंपे और जांच पूरी होने तक गैर जरूरी बयानबाजी ना करें। वजीर आला ने कहा,
1: राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत MSP पर दालों और तेल के बीजों के बड़े पैमाने पर खरीदारी को मंजूरी दे दी है। ये खरीदारी इन रियासतों में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत की जाएगी।

0: उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को होने वाले नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इम्तिहानी अमल में दयानतदारी, शफाफियत और कारकर्दगी के आला मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह तमाम जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाएं और आजादाना और मुनसिफाना तरीके से दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए चौकसी इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल-ए-ज़िक्र तरक्की की है। इस मौके की मुनासिबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एक ख़ुसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्की के 12 साल। आज के शुमारे में हम शुमाल मशरक के तब्दीली के लिए हुकूमत के अहम इकदाम पर रोशनी डाल रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड UPATS ने बुलंदशहर जिले से दो मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से है। इन पर गैंग के दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल होकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। और महकमा मौसमियात ने रियासत के मशरकी और मगरबी अजला के अलग अलग इलाकों में 24 जून तक गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 2-3 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2-3 डिग्री सेल्सियस के बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गर्मी का मौसम अपने पूरे रंग में है। तेज धूप, गर्म हवाएं और दिन भर की भाग दौड़ के बीच जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य, खुशियों और खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें।
1: इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं आज का कार्यक्रम, जहां होंगी काम की बातें, नई जानकारियां और कुछ हल्की फुल्की बातचीत।
0: तो बने रहिए हमारे साथ और इस गर्म जोशी भरे सफर का आनंद लीजिए और स्वीकार कीजिए रितंद्रा मिश्रा
1: और मंदाकिनी तिवारी का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत से करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मंदाकिनी, इस सुंदर से गीत के बाद हमारी बहनों को भी बहुत अच्छा लगा, ये सॉन्ग मुझे बहुत प्यारा लगता है। और आज हम चर्चा में बात करेंगे स्क्रीन एडिक्शन की है, तो आज के समय में मंदाकिनी जैसे मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है और दूसरी स्क्रीन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, हम सभी को पता है ना, चाहे काम हो, पढ़ाई हो या मनोरंजन हो, हर जगह स्क्रीन मौजूद है। लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होने लगते हैं ना या करने लगते हैं तो ये धीरे धीरे आदत बन जाती है ना, तो धीरे धीरे स्क्रीन एडिक्शन बन ही जाती है।
1: बिल्कुल,
0: है
1: ना। आज हम बात करेंगे कि स्क्रीन एडिक्शन क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए रितंद्रा जी, अगर हम बिना वजह बार बार मोबाइल देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मन करता है कि हम बार बार मोबाइल देखें, स्क्रीन ना मिले तो जैसे चिड़चिड़ाहट सी होने लगे, है ना, और नींद हमारी प्रभावित हो रही हो या परिवार के साथ हम कम समय बिता रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको स्क्रीन एडिक्शन हो चुका है।
0: बिल्कुल, और मंदाकिनी देखो मुझे लगता है कि कुछ टिप्स हैं जो हम बहनों से शेयर भी करेंगे और अगर उसको हम लोग अमल में ले आएं तो जो बहुत सारी परेशानियां हैं दूर हो सकती हैं। जैसे कि स्क्रीन टाइम तय कर ले, है ना, दिन में मोबाइल और सोशल मीडिया के लिए समय निर्धारित कर ले, है ना,
1: और जैसे एक नो फोन टाइम होता है वो रखना चाहिए हमें, कि खाने के समय और सोने से कम 1 घंटा पहले हमें स्क्रीन से दूरी बनाए रखनी है।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा देखो दूसरी गतिविधियां जो हम छोड़ते जा रहे हैं उसे भी मुझे लग रहा है अपनाना चाहिए, जैसे किताबें पढ़ना, टहलना, संगीत, बातचीत इत्यादि। ये कुछ लोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर सभी लोग करें तो सभी लोग स्वस्थ रहें और इससे जो होने वाली दिक्कतें हैं उससे भी दूर होंगी, है ना।
1: बिल्कुल, और कभी कभी क्या होता है ना, अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन ऐसा ऑन करके रखते हैं कि सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन लगातार आते रहते हैं और इस वजह से भी हम बार बार मोबाइल देखते रहते हैं, तो जो जरूरी हमारे ऐप्स हैं उनको ही चालू रखें।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की तुमने। और देखो मंदाकिनी, जैसे परिवार की बात करते हैं ना हम लोग, और हम लोग चर्चा में भी हमेशा सम्मिलित करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी कमी समाज के अंदर या परिवार के अंदर जो दिख रही है वो है परिवार के साथ समय बिताने की।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोहरी जिंदगी हर व्यक्ति का हो गया है, तो आमने सामने की बातचीत, डिजिटल समय को अगर थोड़ा सा कम कर दे तो मुझे लग रहा है जो संवादहीनता हो गई है, संवाद आपस में नहीं हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम जुड़ाव महसूस करेंगे, रिश्तों में जुड़ाव महसूस करेंगे, जो

0: आ गया है ना।
1: और हमारी आंखें भी तो स्वस्थ रहेंगी बिल्कुल जी। हाँ। और कहीं ना कहीं जब हमारी आंखों में दिक्कत आती है तो हमारे सिर में भी दिक्कत शुरू हो जाती है, फिर हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। और श्रोताओं, हमें ये याद रखना चाहिए कि जो तकनीकी होती हैं ये चीज़ें हमारे लिए सुविधा के लिए बनी हैं, ठीक है। तकनीक का आप इस्तेमाल कीजिए अपने काम को सरल बनाने के लिए, ना कि उसका ओवर इस्तेमाल करके आप अपने आप को बीमार करिए, ठीक है। और संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, तो आज से एक छोटा कदम उठाइए और स्क्रीन से थोड़ा समय निकालकर खुद और अपनों को दीजिए समय। कहने का मतलब ये है ना।
1: तो अब चलिए कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं और वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। सुनो।

0: जितेंद्रा जी
1: बहुत सुंदर गीत भाई, और ये गीत हमारी मंदाकिनी ने सेलेक्ट किया था, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो बहनें हैं वो भी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा, है ना?
0: बिल्कुल। और चलिए अब हम अपने कार्यक्रम के नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जो है रूपक का, और विषय है अथ युगानुशासन, वाचन स्वर है प्रीति यादव और निकहत सिद्दीकी के, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी। तो आइए।

0: सुबह की पहली किरण के साथ ही हमारे भीतर एक आवाज गूंजती है, वो आवाज है योग की। तन को मन से और मन को आत्मा से जो जोड़ दे वो है योग। स्वस्थ जीवन और दिव्य शांति का आधार योग तन को निरोगी और मन को शांत रखने की सबसे सरल कुंजी है। तनाव भरी इस दुनिया में योग एक सुकून का पल है जो सिखाता है आज में जीना और संवारता है हमारा कल।
1: योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि हमारे शरीर मन बुद्धि और आत्मा के बीच सुंदर सामंजस्य स्थापित करने का विज्ञान है। आज की भाग दौड़ और आधुनिक जीवन शैली में योग एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है।
0: योग कोई धर्म या संप्रदाय नहीं, यह जीवन जीने की एक कला है, खुद को जानने की यात्रा है। यह यात्रा है हमारे विचारों को समझने की, हमारे मन को नियंत्रित करने की और आत्मा के विस्तार की। योग हमें सिखाता है कि हम बाहरी दुनिया की दौड़ से हटकर अपने भीतर झांकें और स्वयं को पहचानें।
1: आज के समय में योग किसी संजीवनी से कम नहीं है। सिर्फ कुछ मिनट का प्राणायाम और अनुलोम विलोम शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है। योग एक ऐसी कला है जो हमें सिखाती है खुद से कैसे प्रेम किया जाए।
0: प्राचीन धरोहर योग आज संपूर्ण विश्व में एक प्रभावी जन आंदोलन और स्वस्थ जीवन शैली का आधार बन चुका है। इसलिए भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकारा। विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। जब पहली बार 21 जून 2015 को राजपथ पर दुनिया ने कदम से कदम मिलाकर योग किया तो एक नया इतिहास रचा गया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 200 से अधिक देशों में योग की गूंज सुनाई देती है। यह भारत की वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का ही प्रतीक

0: प्रतीक हैं।
1: जब 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया, तब दुनिया ने माना कि भारत की प्राचीन विरासत योग में कितनी ताकत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस पहल के बाद से यह दिन सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक वैश्विक उत्सव बन गया है।
2: योग किसी अमृत धारा से कम नहीं। सिर्फ कुछ मिनट का प्राणायाम और अनुलोम विलोम हमारे फेफड़ों को मजबूत करते हैं, वहीं सूर्य नमस्कार हमारे पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार कर देता है।

0: हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इस योग के महत्व को पहचाना था और प्रकृति के सानिध्य में रहकर योग करते थे। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहा है। योग मन की चंचलता और वृत्तियों को शांत करने की एक अद्भुत विद्या है। योग के इसी महत्व पर प्रकाश डाल रही हैं योग गुरु दीप्ति योगेश्वर।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर, योगाचार्य। 21 जून को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक योग महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम देश के जन जन तक योग की अलख जगाना है, इसी उद्देश्य से इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी बढ़ती आयु को स्वस्थ रखने के लिए योग, इस पर जोर दिया जा रहा है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार सभी मिलकर ये प्रयासरत हैं कि पूरे प्रयागराज ही नहीं पूरे विश्व भर में भारत की इस प्राचीन परंपरा को जन जन तक पहुंचाया जाए और स्वास्थ्य लाभ लिया जाए। तो आइए 21 जून को हम सभी अपने घर, प्रांगण, पार्क, मंदिर, सरोवर, कहीं भी समूह में जहां भी योग हो रहा हो, आइए उसमें सम्मिलित हों और योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर फिटनेस, योगा फॉर हेल्थ पर जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखें।
2: आधुनिक जीवन में योग सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में तनाव और बीमारियों से लड़ने के लिए योग सबसे अचूक दवा है।
0: योग हमें सिखाता है हम स्वयं को पहचाने। जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांसों की लय हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। योग एक वरदान की तरह कार्य करता है। योग हमारे जीवन के विभिन्न पहलू

0: रोगों को संवारता है। नियमित आसन और प्राणायाम से रक्त संचार सुधरता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रीढ़ की हड्डी लचीली रहती है। मधुमेह, रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियों में योग अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है।
1: योग और ध्यान से मस्तिष्क में तनाव का हार्मोन कम होता है, मन शांत रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और नकारात्मक विचार कम होते हैं।
0: केवल 20 मिनट की योग निद्रा 4 घंटे की नींद के बराबर विश्राम देती है।
1: विद्यार्थियों के लिए योग अत्यंत उपयोगी है। धारणा और ध्यान के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है और स्मरण शक्ति तेज होती है।
2: मेरा नाम वैष्णवी राय है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। एज अ स्टूडेंट मैं ये समझती हूँ कि योगा हमारी लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी चीज़ है, जो कि हमें डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए और वो भी मॉर्निंग में। इसको करने से डोपामिन रिलीज होता है, आपकी हेल्थ स्टेबिलिटी आती है और पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है। मेडिटेट करने से आप चीज़ों पे और कंसंट्रेशन कर सकते हैं और अपनी लेवल ऑफ थिंकिंग भी बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को बहुत वार्म अप करती हैं और इससे आप हमेशा हेल्दी रहते हो। सुबह उठ के आप योगा करें, अपने घर वालों को भी ये चीज़ बताएं, उनको भी योगा करना चाहिए जिससे कि वो सब लोग हेल्दी रहें। और एज अ स्टूडेंट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे भी योगा इंक्लूड करना चाहिए एज अ डेली बेसिस। सुबह ही बच्चे योगा करेंगे तो उनकी पीस ऑफ माइंड, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, तब वो अच्छे से और स्टडीज पे अपना ध्यान लगा सकते हैं।
0: योग हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब मन शांत होता है तो व्यवहार में मिठास आती है। योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति परिवार में, समाज में सबके साथ सहज और सौहार्दपूर्ण रहते हैं।
1: योग केवल बाहरी शरीर को ही नहीं संवारता, यह भीतर की यात्रा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम स्वयं को पहचानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शरीर स्वस्थ रहे तभी मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहे तभी आत्मा का विकास संभव है। और आधुनिक विज्ञान आज यही बात प्रमाणित कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तक यह मान चुका है कि योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए प्रभावी जीवन शैली है।
0: किसी आम जन के जीवन में योग क्या महत्व रखता है, आइए हमारी श्रोता है उनसे जानते हैं इसके बारे में।
3: मैं प्रयागराज से कंचन पांडे बोल रही हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। योग यानी शरीर, मन और आत्मा का मिलन। योग हमारे प्राचीन संस्कृति की अमूल्य देन है। हम होममेकर हो या वर्किंग हो, आज की तनाव, चिंता और भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियां बढ़ रही हैं। योग हमें इन समस्याओं से बचाने में मदद करता है। यह हमारी एकाग्रता, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यदि इसे विश्वास के साथ अपने दिनचर्या में अपनाया जाए तो यह स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। हर वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, जिससे पूरे विश्व में योग के प्रति जागरूकता बढ़ती है। मैं इस योग दिवस पर एक संकल्प लेती हूँ कि मैं अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगी प्रतिदिन योग द्वारा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए और दूसरों को भी इसके प्रति प्रेरित करना चाहिए। स्वस्थ जीवन ही हमारी पूंजी है।
4: मैं सरिता सिंह, मैं गृहिणी हूँ। मैं समझती हूँ कि हर गृहिणी को या वर्किंग हो, अपने दिन की शुरुआत योगा प्राणायाम से ही करना चाहिए। इससे हमें पूरे दिन एनर्जी फील होती है। मैं तो करीब 10 साल से योगा प्राणायाम करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे फीवर तक भी जल्दी नहीं आता, और आया भी वो प्राणायाम करने से एक दिन में ठीक होता है। मैं तो कहूँगी योगा प्राणायाम करो और हेल्दी रहे। मुझे लगता है योगा और मेडिटेशन हमारे लाइफ स्टाइल का एक अहम हिस्सा है।
1: योग किसी एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि जीवन भर का संकल्प है। आइए प्रण करें कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। सांसों की डोर से जुड़कर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हम सब मिलकर एक स्वस्थ, शांत और सकारात्मक दुनिया का निर्माण करेंगे। योग भगाए रोग सारे, जीवन में खुशियाँ लाए।
0: जो अपनाए योग नित्य वह सदा निरोगी हो जाए।
5: करो योग, रहो निरोग।

0: मैंने अभी सुन रही थी रूपक अथ योगानुशासन वाचन स्वर था प्रीति यादव का और निकट सिद्दीकी का, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। मंदाकिनी भाई बहुत अयोग निश्चित रूप से आज जो हम लोग जिस बीमारियों से जूझ रहे हैं, अगर योग पर मुझे लग रहा है कि ये सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अगर घर घर में सभी लोग जागरूक हो जाए ना
1: बिल्कुल,
0: तो
1: ये बिल्कुल महिलाओं से लेके ये बुज़ुर्गों तक बच्चों तक के लिए है। और जैसा कि अभी हमें रूपक में हमने सुना कि बच्चों के लिए कितना अच्छा है, उनके कंसंट्रेशन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, हर वर्ग को उन्होंने बताया है कि कैसे वो इससे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हम आज जो भी विषय लिए हैं ना वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन एक बात मन में आ रही थी कि जो अभी हम चर्चा भी करने वाले थे कि क्या होती है स्किल शेयरिंग डे,
1: आपको पता है?
0: नहीं।
1: बिल्कुल, आज के दौर में हम अक्सर नई नई बातें सुनते हैं और ऐसा ही एक शब्द है स्किल शेयरिंग डेट। अच्छा, स्किल शेयरिंग डेट होता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, ऐसा समय या मुलाकात जहां दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से कोई नई कला या हुनर सीखें और सिखाएं।
0: अच्छा,
1: जैसे कोई खाने में बनाने में हुनर है
0: तो
1: उस कला को सिखाए, कोई मोबाइल या डिजिटल काम सिखाए, है ना, कोई सिलाई कढ़ाई सिखाए,
0: मतलब जो हुनर उसके अंदर आया हो, है ना।
1: और आजकल तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इस पे वर्क हो रहे हैं, तो कोई भाषा ही आप साझा कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य समय बिताना नहीं बल्कि एक दूसरे से सीखना और सिखाना और आगे बढ़ना होता है। तो महिलाओं के लिए ये एक जरिया है जिससे आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने अनुभव दूसरों तक पहुंचा सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी देखो, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर होता है
1: जी,
0: और जब हम उसे दूसरों के साथ मिल भर कर बांटते हैं तो उसका जो दायरा है वो और भी बड़ा हो जाता है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना आज हम कुछ नया सीखें और अपना कोई हुनर किसी और के साथ साझा करें।
1: बिल्कुल, स्किल शेयरिंग डेट में लोग एक दूसरे को अपना हुनर ही तो सिखाते हैं और व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल तो जरूर होती है रितंद्रा जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, सीखने और सिखाने से नए आइडियाज मिलते हैं, इससे बड़ी डिग्री नहीं छोटा हुनर भी काम आता है, जैसे खाना बनाना, गाड़ी चलाना और मोबाइल चलाना।
0: बिल्कुल भाई, मोबाइल तो आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल।
0: और देखो, एक बात मुझे याद आ रही है कि जो स्किल शेयरिंग है से हम जो है समय को भी उपयोगी बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो आत्मविश्वास और नई दोस्ती बढ़ाने का अच्छा तरीका माना जा सकता है।
1: बिल्कुल। तो चलिए भाई, इस अपनी चर्चा के बाद हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और सुनाते हैं अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत।

0: तो इस प्यारे की प्यारे से गीत के बाद देखिए नरतंद्रा जी हमारे कार्यक्रम में अपने खास सेगमेंट का वक्त हो चला है।
1: बिल्कुल, और तो आज क्या आज, बताने वाले हो?
0: आज जो हमारा विषय है वो है मिनिमल मेकअप से दिखे खास। तो सखियों, कम मेकअप में भी खूबसूरत और आकर्षक दिखा जा सकता है, और इसके लिए त्वचा को अच्छी तरह से बस मॉइस्चराइज करना है। रितंद्रा जी अक्सर क्या होता है, बहुत लाउड मेकअप कर लेते हैं, और खासकर आज जो गर्मी
1: का मौसम है,
0: इस समय स्वेटिंग भी होती है, हमें बाहर आना जाना होता है, तो हम समझ नहीं पाते कि हमें पार्टीज के लिए कैसा अपना लुक रेडी रखना है।
1: बिल्कुल,
0: तो बस इसी के लिए अपनी बहनों को छोटी छोटी टिप्स दे रहे हैं कि बस करना क्या है, आपको अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना है। हल्की बीबी या सीसी क्रीम लगा लीजिए, स्किन टोन को इकसार कर लें, आंखों पर हल्का काजल या मस्कारा लगाएं, गालों पर हल्का ब्लश लगाएं जो आपको नेचुरल शाइन देता है, न्यूड हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक चूज करें, अपनी आईब्रोज को सलीके से संवारें, और इसी बात पे आप देखिए चमकती दमकती
1: निखरता हुआ। बिल्कुल,
0: और इसी बात पे दो पंक्तियां हैं कि मिनिमल मेकअप की यही है पहचान, सादगी में छिपा होता है सबसे खास निखार।
1: वाह वाह वाह, क्या बात कही तुमने मंदाकिनी। और सही है, ये जो मौसम है, मौसम के हिसाब से अगर हम मेकअप करें तो वो निश्चित रूप से वो खूबसूरत भी लगता है ना। तो अब तुमने निखार बताया, तो मैं जायका में देखो दो रेसिपी लाई हूँ बहनों के लिए। तो पहली रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ खुरचन की। तो खुरचन एक्चुअली मुझे भी पसंद है, और मैं ये बचपन से ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसकी पहले सामग्री बता देती कि सामग्री पहले नोट कर लें बहनों। फुल क्रीम अगर 2 लीटर के लिए हम बना रहे हैं, 2 लीटर दूध में, तो चीनी 4 या 5 बड़े चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और केसर धागे कुछ यदि आप चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। विधि है, एक चौड़े और भारी तले वाले जो बर्तन है, जिसमें मतलब कभी कभी कोई कढ़ाई हल्की होती तो जल जाती है, तो कोई मोटी कढ़ाई लें और उसमें दूध उबालें, और दूध को धीमी आंच पर पकाते रहें। बर्तन के किनारों पर जो मलाई जमती है ना जब हम बॉयल करते हैं तो

0: उसे धीरे धीरे किनारों पर उसको चिपकाते भी रहें, और जब दूध काफ़ी गाढ़ा होकर 1/4 हिस्सा रह जाए तब उसमें चीनी, इलायची पाउडर डालकर मिला दें, और बर्तन के किनारों पर जमी सारी मलाई जिसको खुरचन कहते हैं वो खुरच कर दूध में मिला दें, और ऊपर उसके ऊपर जो है उसको 1-2 घंटे के लिए या तो फ्रिज में रख दें या ठंडा छोड़ दें। ठंडी खुरचन को कटोरी में निकालें अगर फ्रिज में रखा है तो, ऊपर से फिर उसमें सजावट के लिए उसमें कुछ आप मेवे या जो कुछ भी उससे डेकोरेशन कर सकते हैं, और ये एक जानते हो पारंपरिक ये मिठाई है और ये बहुत अच्छी भी लगती है।
1: बिल्कुल, हम अपने दादी और नानी से अक्सर ये चीजें खाते थे, बिल्कुल खाते थे
0: बिल्कुल। और इसी के साथ एक और भी रेसिपी है, वो है मखाना नारियल लड्डू की। तो सामग्री बहने नोट कर लें, मखाना 2 कप का अगर हम एक मानक ले रहे हैं तो उसमें जो है सूखा जो नारियल आता है वो 1 कप कद्दूकस कर लें, उस घी 2 बड़े चम्मच चाहे तो देशी घी ले लें तो और अच्छा थोड़ा टेस्ट आता है, नहीं है तो कुछ कोई भी घी आप ले सकते हैं जो यूज करते हो। गुड़ पाउडर उसको बना लें या तो जो भूरा चीनी आता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 3/4 कप। इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और कटे हुए बादाम काजू गार्निश करने के लिए 2 बड़े चम्मच ले लें। अब विधि है इसकी, एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डालकर मखानों को 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर भून लें खूब अच्छी तरह, और ठंडा होने पर मखानों को मिक्सर में दरदरा पीस लें। उसी कढ़ाई में बचा हुआ घी डालकर नारियल को 2 से 3 मिनट तक हल्का भून लें, और अब इसमें पिसा हुआ जो अभी हमने मखाना, इलायची पाउडर और मेवे हैं लिए थे उसको डालकर अच्छी तरह मिला लें और आंच बंद कर दें। मिश्रण थोड़ा ठंडा होने पर गुड़ पाउडर उसमें मिला दें और मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर हाथों से मन चाहे आकार के लड्डू बना लें। यदि मिश्रण सूखने लगे, कभी कभी होता है चिपचिपा लगता है, तो उस समय जो है थोड़ा सा और भी उसमें गर्म घी या मिला लें, कभी कभी रफ लगता है जब बांधने चलते हैं लड्डू नहीं बनते हैं तो मिला लें, और मखाना लड्डू भाई मंदाकिनी पौष्टिक, स्वादिष्ट और व्रत के लिए भी उपयुक्त होता है, तो इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं आप 7 से 10 दिन तक आराम से ये चल सकता है। स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसे इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं या थोड़ी केसर भी मिला सकते हैं जो आप यूज करते हैं ना।
1: तो रितंद्रा जी, इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमारे श्रोताओं को बताया और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल विधि से आपने इसको समझाया है और मैं तो ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ आज। तो चलिए अब अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: भाई देखो, चेहरे की मुस्कान और दिल की सादगी, बस यही हमारी असली खूबसूरती है।
1: बिल्कुल। और देखिए ना, वक्त हो चला है हमें अपने श्रोताओं से विदा लेना है, लेकिन उसके पहले श्रोताओं से आग्रह है कि अपने प्यारे प्यारे संदेश जो हमें भेजते हैं वो भेजते रहिए। और हमें पता है उसके लिए आपको चाहिए हमारा ईमेल एड्रेस, तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, grilakshmibalsang123@gmail.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250, हिंदी में 8004926250। तो अपने प्यारे प्यारे संदेश जरूर भेजिए और स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: Small cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन की सफल यात्रा संपन्न श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसका इलाज संभव है
2: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व

0: जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रह के रोग की पहचान करना है। तीसरे प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
0: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन

0: तय किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
3: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति

0: अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
3: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए बढ़ाते हैं आज

0: की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारे डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-5559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो
2: जहाज पर नौकरी करता
1: है, जो रहस्यों और रोमांच से
2: नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है, कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आकर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।

कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला।

वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल

गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल

0: थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 212.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: कैसे हैं आप सब और छुट्टियां कैसी चल रही हैं आप सबकी? उम्मीद है बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आप सबकी छुट्टियां और खास बनाने हाजिर हैं आपकी दो दीदियां,
2: मैं रितंद्रा दीदी
1: और मैं मंदाकिनी दीदी। तो बच्चों ये बताइए, अपनी छुट्टियों में आप अपनी दादी नानी के घर गए थे कि नहीं? और गए थे तो उनसे खूब मजेदार कहानियां सुनी कि नहीं? कहीं मोबाइल में तो नहीं लगे थे? अगर ऐसा किया तो फिर आपने अपनी कहानियां मिस कर दी होंगी। तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी दो दीदियां जो हैं वो आज अपनी दादी नानी की कहानियां आपको सुनाएंगी।
2: तो बच्चों, दादी नानी की कहानियां हमारे बचपन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। जब रात को खाना खाकर बच्चों दादी या नानी के पास बैठते थे तब उनकी कहानियों की दुनिया शुरू होती थी। इन कहानियों में राजा रानी, परियां, जादुई जंगल, बोलने वाले पशु पक्षी और उनसे सीखने वाले पात्र होते थे। एक गांव में बच्चों एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनके पास बहुत अनुभव और ज्ञान था। हर शाम गांव के बच्चे उनके आंगन में इकट्ठा हो जाते थे। दादी उन्हें एक से एक बढ़कर रोचक कहानियां सुनाती थी। एक दिन उन्होंने सच्चे लकड़हारे की कहानी सुनाई। कहानी में एक गरीब लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो बहुत दुखी हुआ और बैठ गया। तभी नदी की देवी प्रकट हुई। उन्होंने सोने व चांदी की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारे ने ईमानदारी से कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। उसकी सच्चाई से खुश होकर देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। तो बच्चों इससे हमें क्या सीख मिलता है कि हमें ईमानदार होना चाहिए,
1: क्या
2: है ना?
1: बात है बच्चों। तो रितंद्रा दीदी ने कितनी खूबसूरत कहानी सुनाई, उम्मीद है आपने इससे बहुत अच्छी सीख ली होगी। और रितंद्रा दीदी अब तो हमारे सेगमेंट में है आओ जाने।
2: हाँ, तो क्या बताओगे बच्चों को?
1: उसमें आज विषय है इतिहास मानचित्र कला का। तो बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जो हमारी दुनिया है उसका जो नक्शा है हम इतनी आसानी से कैसे देख लेते हैं? बहुत समय पहले ना तो मोबाइल थे, ना ही कंप्यूटर और ना ही आधुनिक नक्शे। उस समय लोग रास्ते याद रखने के लिए मिट्टी, पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे। इन्हीं चित्रों से मानचित्र कला की शुरुआत हुई। लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान यानी जिसे ग्रीक कहते हैं उनके विद्वानों ने पृथ्वी के नक्शे बनाने का प्रयास किया। बाद में प्रसिद्ध विद्वान क्लॉडियस टॉलमी ने दुनिया का अधिक सबसे मैनेजमेंट मानचित्र तैयार किया। मानचित्र आपको पता है ना, उसे मैप बोलते हैं, है ना? भारत में भी प्राचीन काल में नदियों, पहाड़ों और नगरों का वर्णन मिलता था। समय के साथ यात्रियों, खोजकर्ताओं और साइंटिस्टों ने नए नए जगहों की जानकारी जुटाई और नक्शे अधिक सटीक होते गए। आज जो सैटेलाइट्स हैं, कंप्यूटर है, उसकी सहायता से बहुत ही सटीक मानचित्र बनाए जाते हैं। हम अपने मोबाइल में कुछ ही सेकंड में किसी भी स्थान का नक्शा देख सकते हैं। इस प्रकार मानचित्र केवल कागज़ पर बनी रेखाएं नहीं बल्कि मानव ज्ञान, खोज और कला का अद्भुत संगम है।
2: तो बच्चों, भाई मंदाकिनी दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी ना। और भाई बच्चे, मैप तो अब बहुत सारा सोशल मीडिया से भी सर्च कर लेते हैं, है ना?
1: हाँ, और रितंद्रा दीदी, अब हम अपने बच्चों को जिसका हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उसकी तरफ ले जाएंगे और वो है गीत संगीत का।
2: तो चलो सुनते हैं।
1: उसके पहले हमें बच्चों से विदा भी लेना है क्योंकि इस गीत के साथ हम आपको पहले ही विदा लेते हैं और आप गीत का आनंद उठाइए। तो बच्चों जय हिंद।

0: हाँ तो बच्चों, कैसा लगा गीत? और इसी गीत के साथ ही अपने कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो बच्चों से
1: जय
0: कहते हैं
1: हिंद।
0: जय हिंद।

0: एक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
1: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he is having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here and say in a short while, he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
0: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
1: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
0: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
1: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you, the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through forgetting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
0: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नज़र डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी, और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो।
1: या यू जस्ट कंटिन्यू।
0: इस योजना की अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके

0: अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लानरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक

0: चुके हैं, पहले ही हो चुके, और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों। और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो में आती है।
1: People will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let this Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार।
0: जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके। और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है। जी
1: या एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, जिनको पहली बार नौकरी मिली
0: है।
1: दिस कंपोनेंट फोकसेस डायरेक्टली ऑन द यंग इंडिविजुअल्स एंटरिंग द फॉर्मल वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द एलिजिबिलिटी इज न्यू एम्प्लॉयज जॉइनिंग एन ईपीएफओ, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible. And even the, so that more and more people get employment. And they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल सभी को फायदा है। बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था,

0: का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा। कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं। तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this the one which is taking place right now is from the 1st of August 2025. It started last year till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 saal.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये।
1: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखो देखा हाल आप तक पहुंच रहा है, और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो।
1: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes, and then. I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ।
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे। योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है

0: तो सैलरी तो कंपनी को
1: तीन तीन
0: 3,000 रुपये
1: यस
0: प्रति कर्मचारी मिलेंगे, इसका आपने जिक्र भी किया था, है
1: या
0: ना?
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स, दैट इज व्हाट इट सेज नो. The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
1: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, when the money will go to 15 lakh people into their accounts and they'll be getting their letters and it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know, just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
0: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
1: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. दे ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल. सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट देयर लेटर.
0: An amount will be transferred.
1: Yeah.
0: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for

0: 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: And see, the beauty is that the person who'll be giving the bouquet is one of the young beneficiaries, and he'll be so happy in his heart that I'm getting a job, and our Prime Minister has given this job to me. So, and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming. You know, I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button. the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board, on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister

0: Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they're able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they're self-sufficient, they're independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं.
0: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry. If you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something. You've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you. And he will see that you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So that's why, you know, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा.
0: yes,
1: तालकटोरा
0: yes.
1: स्टेडियम कैसे yes. भरा रहता था और yeah. बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना. तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज़्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से.
0: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and mingles with them and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है.
0: yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं. आप जहां जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी.
0: yeah.
1: है ना.
0: एंड सी हु एक्सपेक्टेड दैट 3.5 करोड़ पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन इंडिया. राइट. द इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. 15 लाख हैव ऑलरेडी गॉट इट.

0: Today they'll be, it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meagre amount, some may get very meagre amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They have, they get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई. कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person
1: translate
0: किया है. Yeah, he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is saying, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: Mm.
0: Yeah.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतज़ार तो कुछ ही पलों का है, ज़्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं,
0: yeah, I think everything has stopped, they are all in attention, and I think the Prime Minister is arriving with other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais, and once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: Duniya ke sabse lokpriya neta, mananiya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji ka.
3: Ek baar zordaar taaliyan ho jaye.
2: देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन.
0: द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड, ही हैज टेकन हिज सीट ऑन द डेस्क.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: फ्लैंक बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑन हिज राइट एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू हिज लेफ्ट.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामणि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत.

करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए

0: 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत

0: रोजगार योजना लागू हो रही है।
1: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
2: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसर।

0: pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money, and the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
1: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
0: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
2: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
2: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर

योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है, और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता था ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है, और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ

कि उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है

कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़

और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल

सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना

0: और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करते हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है, और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country, and he says that they are the future pillars of our country and the

0: country rests on their shoulders. That's why he's been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है. और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू. और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं. इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ. नमस्कार.
2: अभी आप मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है. थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर.
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी. और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण.
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
6: हेलो
7: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ.
6: किससे?
7: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले. आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे.
8: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे.
6: सर इतने कहाँ से?
8: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
7: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में.
6: 2 लाख
9: क्या हुआ पापा?
6: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं.
7: अरे
6: काट दिया.
9: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है.
6: फ्रॉड?
9: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें. अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
6: तो पैसे गवाओगे.
10: RBI कहता है.
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी. और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.
12: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी.
13: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए.
12: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ.
13: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
12: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी. आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो. अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें. रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ.
2: अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर.

0: पंचो राम राम।
1: हम कहे सुमरन भैया।
0: हाँ चंद्र भैया,
1: देखा हो जैसे जैसे भाई अपने भाई समाज में विकास भय हर क्षेत्र में, खेती बाड़ी में भी तरह तरह से विकास भय, और निश्चित तौर पे लीक से हटके जो किसान भाई खेती में लगेन उनका दो पैसा के गुंजाइश भाई।
0: बिल्कुल भैया, और जैसे आप कहें ना कि भाई विकास जोन भवा बाटे वो कई तरीके से भवा बाटे, तकनीकी रूप से भी विकास भवा बाटे और साथ ही साथ जोन जागरूकता भा किसान भाई की वो बड़ी बाटे। अब जैसे देख लें कि अब जैसे भाई गर्मी का महीना बाटे और गर्मी के महीना में जोन समस्या आवत है, जोन हम सब सब्जियन के खेती कई रहा है, सबसे बड़ी समस्या आवत है कैसे उमन सिंचाई की जाए।
1: बिल्कुल,
0: पहले का जोन जमाना रहा भैया, पहले देख चंद्र भैया कम खेती किसानी होता रही, अपने खाए पिए बड़े होता रहे। जमाना बदला, बहुत किसान भाई व्यावसायिक रूप से भी खेती किसानी कई रहा है, बहुत अपने खाए पिए बड़े कई रहा है, बहुत अलग तरीके से भी खेती हो गई बाटे।
1: बिल्कुल,
0: तो भाई निश्चित तौर पर जोन जरूरत बाटे वो बढ़ी बा। अब भाई सिंचाई कैसे की जाए, अब सिंचाई का नवा नवा जोन अनुसंधान भवा है, नवा नवा जोन तरीका भवा है भाई, उसे अगर सिंचाई होता टाई तो पहली बात तो आपका लागत बाटे वो कम होत बाटे। दूसर चीज ये बा जोन पौधन के जितना पानी चाहे उतना पानी समुचित रूप से मिल जात बाटे।
1: सुमिरन देखा भैया, अब तो जवन आधुनिक सिंचाई के जवन तकनीक विकसित की बाटी भाई, देखा में एक तो भाई कम समय में ज्यादा क्षेत्रफल के सिंचाई हो जात है,
0: एकदम भैया
1: कम पानी लागत है,
0: बिल्कुल
1: लागत भी कम आवत भैया,
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखा ये जोन आधुनिक तरह तरह के सिंचाई के तरीका विकसित किया होगा बाटन भाई, देखा अगर हम पचे किसान न अपनाऊ तो भाई फिर ओकर इजाद करे के कोनो मतलब नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल चंद्र भैया कही गए ना। दूसर बात ये बात बाटे ना कि भाई जो नवा तरीका बाटे वो आपके जोन फसल बाटे ओ का लाभ पहुंचाए।
1: बिल्कुल,
0: ज्यादा पानी कम पानी दोनों स्थिति में भाई आपके पौधन के नुकसान होता भाई। हम सभी जानी था कि भाई अगर ओकर सही तरीके से सिंचाई ना होए, कभी कभी होता भैया कि ज्यादा पानी पड़ जाता ओहू में भाई सड़न पैदा हो जाता
1: है
0: और पौधा खराब हो जाता, कम सिंचाई भी हो जाता भाई, कम पानी पहुंचा, कम अगर सही तरीके से उनकर पानी ना पहुंचे तो निश्चित तौर पर पेड़ पौधा गिर जाएंगे
1: भैया। हो देखा जड़ के ही तो पानी की जरूरत है,
0: एकदम
1: का जरूरत है भैया, जहाँ फल लगा वो पानी से डूब जाए
0: कुछ
1: तो भाई देखा
0: कर दिन की भाई बुढ़ाई देती है।
1: नहीं तो भाई देखा अगर फल डूबे तो ओकर रंग बदले, ओकर जौन प्राकृतिक जौन रूप बाटे जौन रंग बाटे वो प्रभावित होए, तुहार जौन बाजार भाव बाटे वो प्रभावित होए।
0: दूसर चीज ये बात बने कि जो तमाम तरह का अनुसंधान भवा है, अनुसंधान से तरह तरह के सिंचाई तकनीक आई गई बाटे, ट्रेंच विधि की सिंचाई बाटे, नाली विधि से बाटे, स्प्रिंकलर विधि बाटे,
1: काहे ना काहे ना,
0: ये जो चीज बाटे ये आपके फायदा ही दे।
1: बिल्कुल भैया, हर तकनीक में हर सिंचाई की विधि में कम पानी में ज्यादा से ज्यादा और पौधा तक ही जहाँ का मुख्य रूप से पानी की जरूरत है वहीं तक पानी पहुँचा।
0: और एक चीज और बना चंद्र भैया कि जो अलग अलग फसल होते हैं, अलग अलग फसल में अलग अलग तरह की सिंचाई की भी जरूरत पड़ता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कोनो फसल के ज्यादा पानी चाहे,
0: ज्यादा पानी चाहे,
1: कोनो फसल के बहुत हल्का खाली जो ना झीसा चाहे,
0: झीसा चाहे होगा,
1: तो भाई वही तरह से ये तकनीक के भी विकसित किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जोन आपका फसल बांटते फसल के हिसाब से भैया ये कहा जाता है ना कि भाई फसल के हिसाब से अगर खेत के दाना पानी मिले तब भैया जोन फसल आपका विकास होए वो ऐसा होए कि भाई आपके चार पैसा की आमदनी होए।
1: बिल्कुल,
0: कहना कि स्प्रिंकलर विधि बाटे या ट्रेंच विधि एक अब ट्रेंच विधि में क्या होता है कि भाई जो नाली बनाई दी जाते हैं, नाली विधि अगर कहा जाए कि भाई जो पौधा लगा था कुछ ऊंचाई पे लगाई दिया जाता और बीच में आपके जगह होता जहां भैया पानी छोड़ दिया जाता
1: भाई। देखा नाली में पानी भर गया
0: हाँ?
1: तो भाई रिस्क के जो ना दूर दूर तक भैया पौधन के मिल जाए।
0: बिल्कुल,
1: वही नाली के माध्यम से उर्वरक भी दे देख।
0: बिल्कुल, आपके एक तरह से आसानी हो जाए जो आपके खाद उद्योग के बाटे वो बड़े आसानी हो जाए। दूसर चीज ये बात बाटे कि जोन पहले पानी भरा जात रहा तो पानी भरे से का होता रहा कि भाई पूरा खेत या तो भर दिया जाए, उसे का हो कतो मेड़ टूट गई कतो डांट टूट गई तो भैया वो पनिया जोन रहा वो आपका पोषक तत्व लेके दूसरे खेत में चला जाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ऐसे जो नई चीज बाटे की ट्रेंच विधि से अगर सिंचाई करें किसान भाई तो निश्चित तौर पर भाई लाभ ले ही
1: भैया हो।
0: हाँ बताऊँ
1: कि भाई देखा अपने कार्यक्रम बता दे कि भाई देखा आज जो है ना एक वार्ता बे प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण,
0: अच्छा
1: तो विवेक सिंह की वार्ता बे का सुना जाए, लेकिन सोचता है कि पहले

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती दे समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: भैया देखा, ओंकारनाथ की गौनाई भी होगी और संदेश भी होगी।
4: हाँ बिल्कुल भैया,
3: जीवन कहते रहे ना।
4: हाँ हाँ,
3: कि प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण।
4: अच्छा अच्छा,
3: यही विषय पे विवेक सिंह की भैया वार्ता बाटे।
4: बिल्कुल भैया,
3: एक सुन लिया जाए।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाई दे।
5: प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण। हम सभी यह जानते हैं कि प्रकृति की 5 प्रमुख संपदाएं होती हैं। पहला जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन। इन 5 के संरक्षण पर ही प्रकृति की शोभा विराजमान है। यदि इनमें से किसी एक का संरक्षण नहीं होता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। प्राकृतिक संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि 5 जीव पर प्रत्येक मानव ध्यान देकर उसका संरक्षण करते रहें, क्योंकि प्रकृति संतुलन बिगड़ने पर ही पूरा पर्यावरण प्रभावित होने लगता है। अंततः मानव उपयोग के संसाधन प्रभावित होने लगते हैं। जल, अगर हम बात करें जल की, तो जल संरक्षण सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका सदुपयोग अगर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सभी प्राणियों को पानी पीने के लिए परेशानी हो जाएगी। और आज कई बड़े बड़े शहरों में यह देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति को पीने के लिए पानी सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है और व्यक्ति को दूषित जल पीने के लिए मिल रहा है। अतः हम सभी को जल संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। बरसात के समय में जो जल हमें प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, हमें उसे जमीन के अंदर संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। बात करते हैं जमीन की। जमीन का भी संरक्षण नहीं हुआ तो धीरे धीरे जमीन की उपजाऊ परत कट जाएगी और जमीन ऊबड़ खाबड़, अनुपयोगी, अन्य नहीं पैदा करने वाली हो जाएगी। लोग भूखे मरने लगेंगे। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सभी जानते हैं कि जमीन अन्नपूर्णा देवी हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे और खाने पीने की बहुउपयोगी चीज़ें हमें प्रदान करती हैं। अब हम बात करते हैं जंगल की। वृक्ष पेड़ पौधे से पूरा पर्यावरण की रक्षा होती है। जन जीवन का स्रोत है, साथ ही ईश्वर के द्वारा मानव को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहार को संभाल कर रखना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जीव प्राणियों के लिए ऑक्सीजन भी इन्हीं वन वृक्षों के माध्यम से मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष से वायु, वायु से जल, जल से अन्न, अन्न से जीवन। अतः हम यह कह सकते हैं कि वृक्ष बचाएं, जीवन पाएं। अब हम बात करते हैं जानवरों की। वन्य जीव विविधता को कायम रखते हुए तथा पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। अन्य जंगली जीव पारिस्थितिकी तंत्र को सुंदर, आकर्षक, संयमित एवं संतुलित बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां एक साथ मिलकर रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए जानवर का होना बहुत ही आवश्यक है। जानवर पेड़ पौधों के बीजों को इधर उधर पहुंचाते हैं, साथ ही जंगली जानवरों से आसपास के क्षेत्रों में उनके द्वारा पेड़ पौधों को रोपित किया जा सकता है। साथ ही परागण के माध्यम से पौधों की वृद्धि में सहायता कर

करते हैं, जानवर खाद्य श्रृंखला में बहुउपयोगी हैं। जंगली जानवर हमारे खाद्य श्रृंखला को संयमित करते हैं क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के कीटों को अपना आहार रूप में स्वीकार करते हैं और जिससे खाद्य श्रृंखला संयमित रहती है। साथ ही साथ जंगली जानवर बहुत सारे छोटे छोटे जीवों को अपने आहार के रूप में लेते रहते हैं। जन, जन का मतलब यह होता है हम सभी। जन मतलब आम जन, जनता या लोग। जन का मतलब स्पष्ट रूप से लोग होता है। मानव गतिविधियां पर्यावरण की स्थिरता को प्रदान करती हैं। प्राकृतिक संपदा को मानव अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए विनाश कर रहा है, उसके संरक्षण एवं संवर्धन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इसके संरक्षण न होने पर आने वाले दिनों पर जन पर ही इसका प्रभाव होगा। विभिन्न पारिस्थितिकी कीटों टेंटों को संतुलित बनाए रखने के लिए मनुष्य को संरक्षण प्रयासों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग का अभ्यास करना चाहिए। प्रदूषण को कम करना चाहिए और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिए। साथ ही बहुत सारे प्राकृतिक संरक्षण के लिए बहुउपयोगी नारे हमारे कवियों, शिक्षाविदों एवं पर्यावरण शास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं। प्रकृति की यही पुकार, प्रकृति की है अब यही पुकार, बंद करो पर्यावरण पर प्रहार। प्रकृति का शोषण होने से बचाना है, पर्यावरण को जीवन के लिए सुरक्षित बनाना है। यदि नष्ट हुआ प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ होगा मानव का जीवन यापन। प्रकृति का न करें हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। ऐसे बहुत सारे नारे आम जनमानस के बीच में प्रचलित हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जा सकता है। बात करते हैं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। विभिन्न प्राकृतिक चक्र जैसे जल कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र में निरंतरता लाने से हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। बात करते हैं जल चक्र की। जल चक्र प्रकृति में जल का संतुलन कायम करता है और सभी के लिए जल की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। साथ ही अब बात करते हैं कार्बन चक्र की। जैव भू रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, भूमंडल, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ नियमित होता है। ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता और स्तर बनाए रखना है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र एक जैविक भू रासायनिक प्रक्रिया है जो निष्क्रिय वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों, जानवरों, अन्य जीवों के लिए उपयोगी होता है। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों की सामान्य तथा संकट ग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखने तथा उन्हें विलुप्त होने से बचाना वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य विलुप्त होने के कगार पर पहुँचे वन्य जीवों की नस्लों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों को संरक्षित करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वन्य जीवों का संरक्षण हमें उन संसाधनों को बचाने में मदद करता है जो हमें प्रकृति के द्वारा उपहार के रूप में प्रदान किया गया है। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर इसकी रक्षा करें और सहेज कर रखें। वन्य जीव से मतलब उन जानवरों से हैं जो पालतू नहीं हैं, ऐसे पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों से हैं जो मनुष्य के द्वारा संवर्धित नहीं की गई बल्कि प्रकृति के द्वारा ही हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुई हैं। अतः हम सभी को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए और आधुनिकता भरे इस जीवन में ऐसे पेड़ पौधों, जानवरों की हमें रक्षा करनी चाहिए जो प्रकृति होने की कगार पर हैं। हमें अपने वन्य जीव प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना चाहिए, साथ ही साथ उनके संवर्धन के लिए हमें कार्य करने चाहिए। वन्य जीव

0: संरक्षण का तात्पर्य है कि हम सबको जानवरों और पौधों की उन प्रजातियों का संरक्षण करना सुनिश्चित करें जो लुप्त होने की कगार पर हैं। हमें इन प्रजातियों के अस्तित्व को बचाना है और लोगों को अन्य प्रजातियों के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए शिक्षित करना है। ऐसा नहीं है कि इन विलुप्त होती जीवों को बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो विलुप्त हो रही पेड़ पौधों, प्राकृतिक संपदाओं और जानवरों की रक्षा हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा चीतों की घटती संख्या को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 8 चीते अफ्रीका से ले आकर भारतीय पर्यावरणीय परिक्षेत्र में चीतों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। वास्तव में वन्य जीव विश्व की पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में प्रकृति की प्रक्रियाओं को संतुलन और स्थिरता प्रदान करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्रकृति की या प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव प्रकृति की प्रक्रियाओं को संतुलित एवं स्थिरता प्रदान करती है। विलुप्त हो रहे वन्य जीवों को बचाना, प्रकृति के दिए गए उपहार को सहेज कर रखना, खाद्य श्रृंखला बनी रहे। अंत में पुनः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्राकृतिक संपदा, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन का सही उपयोग करके इसका संरक्षण और संवर्धन करें, तभी हमारा और आपका अस्तित्व एवं जीवन है। प्राकृतिक संतुलन के लिए सभी वन्य प्राणियों, शेर, बाघ, चीता, हाथी, मगरमच्छ, तेंदुआ, भालू इत्यादि का संरक्षण बेहद जरूरी है। साथ ही साथ प्राकृतिक संरक्षण के लिए ऐसे पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है, अन्यथा हम सभी एक दिन इन सभी से बहुत दूर हो जाएंगे और हमारी खाद्य श्रृंखला धीरे धीरे बिखरने लगेगी और पूरा का पूरा पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनके विरोधी से हम इंसानों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बंद करो करना जानवरों का शिकार नहीं हो जाएगा जंगल बेकार, यदि इसको नहीं किया स्वीकार।
1: हाँ भैया, देखा जोन वार्ता रही
2: हाँ
1: प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण, विवेक सिंह भैया का वार्ता रही। और न केवल ई बातचीत आपके बारे बाटे, बल्कि समाज में जितना जने हैं भाई, सब के लिए ई समझे की जरूरत बाटे कि हमार पचन का क्या जिम्मेदारी है बा पर्यावरण के प्रति।
2: भैया हो देखा हो पर्यावरण जौन बा ना ये कौनो एक आदमी के ताहे ना
1: एकदम बिल्कुल
2: भाई। देखा इसमें सबके सहयोग की जरूरत बा, सबके पे एकरे विषय में सोचे की जरूरत बा कि कैसे एका साफ सुथरा बनावा रखा जाए, कैसे इसमें जौन भाई प्राकृतिक जीव बाटें जो भाई उनका संरक्षित रखा जाए, कहे से भाई वो भी प्रकृति की शोभा है।
1: बिल्कुल प्रकृति की शोभा है। और हम तो समझते चंद्र भैया कि ये प्रकृति रहे तभी मानव जीवन रहे,
2: बिल्कुल भैया
1: प्रकृति
2: बिल्कुल
1: खत्म हो जाए तो वही दिन मानव जीवन भी खत्म हो जाए। और जो चीज ये समझाते भैया अरे कि भाई ये चीज का कोनो मूल्य नहीं बा,
2: हाँ
1: आपके
2: हाँ
1: समझे के पड़ी ना,
2: हाँ
1: एक खरीद सकत है और न कितना पैसा आपके पास हो जाए भाई।
2: ना
1: प्रकृति अगर चाहबा कि भाई पेड़ आज अगर चाहबा आप, बहुत पैसा बा आपके पास
2: हाँ
1: और
2: हाँ
1: चाह कि पेड़ हो ही जाए,
2: तुरंत
1: बड़ा पेड़
2: लगाई
1: तुरंत
2: तुरंत बड़ा
1: लगाए,
2: हो
1: तुरंत
2: जाए।
1: लहलहाई लागे, हो ही
2: हाँ
1: सकत है, नहीं हो
2: ना
1: सकत है। तो ये समझे के पड़ी कि भाई बहुत समय लगत है
2: बिल्कुल
1: प्रकृति के बने में, भाई बहुत समय लगत है। और सबसे अच्छा तरीका बा प्रकृति और पर्यावरण के बचावे के, जो अगर रूप बाटे उका वही रूप में रह दें, उसे छेड़छाड़ कम कराई।
2: भैया हो देखा अब तो भाई इतना पढ़ा लिखा लोग हो गई बाटे, पहले जब इतना शिक्षा ना आई रही तब लोगन के सोच देखत कैसे रही
1: हाँ
2: कि एक से एक भैया बड़ी बड़ी बाग लगावत रहन है और वो पौधा ओका तैयार कर वृक्ष के रूप देव जो ना
1: हाँ
2: है अपन भैया वो कर्म समझत
1: हाँ
2: रहे, धर्म
1: एकदम
2: समझत
1: एकदम।
2: रहे।
1: अच्छा नर भैया, एक चीज हमके और बड़ी खराब लगत है, ये बहुत जने से हम मिले थे तो कहते हैं कि भाई वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। वो वृक्ष काट के अगर वृक्षारोपण करते हैं तो कोनो ओकर मतलब नहीं
2: ना
1: बाटे।
2: ना भैया
1: सबसे पहली जो चीज बाटे वृक्षारोपण, अच्छी चीज बाटे ये हम
2: हाँ
1: मानी था, पर सबसे पहली चीज बाटे कि जोन वृक्ष अभी बाटेन, जोन पेड़ पौधा अभी बाटेन।

0: भाई ये नहीं कि 10,000 10 वृक्ष काट दिया, एक लगाई दिया, 10 काट के 100 लगाई दा भाई, वो चीज ना मिल पाए आपके। तो जोन वृक्ष अभी बांटन भाई, उनकर संरक्षण सबसे बड़े जरूरी बात है। आप अलग से लगावत ही नहीं, अच्छी बात बात है। हम तो कहब कि भाई एक नहीं 100 वृक्ष लगावा,
1: बिल्कुल लगावा चाहिए।
0: जोन अभी बांटन उन्हों के देख रेख जरूरी बात है, उन्हों के दाना पानी जरूरी बात है, बना उन्हों का ध्यान दे।
1: अब देखा कभो कभो प्रकृति के कुछ प्रकोप से भैया कुछ पेड़न के नुकसान
0: हाँ, हो जाता है।
1: तो भाई देखा वो अगर पेड़ खाली हो जगह हो तो वहाँ लगा दे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लगा। तो भाई ये तो समझ में आवत है
0: हाँ।
1: लेकिन अब कहा का जानबूझ के काट के
0: हाँ।
1: अब फिर से भाई वृक्षारोपण करी तो भाई वो जितना देत लाभ देत
0: हाँ।
1: भैया उतना लाभ दे मौका कितना
0: साल लगे,
1: लगे,
0: दस साल
1: उतना
0: लगे।
1: जीवन रहे कि नहीं
0: रहे। तो ये बात समझे के पड़ी चंदर भैया, और ये एक सिर्फ समझे के नहीं पड़ी, एक जिम्मेदारी के रूप में आपके लेके पड़ी।
1: बिल्कुल,
0: कि भाई
1: बिल्कुल।
0: हमार त्योहार राम अवतार भैया, राम लखन भैया, सबका जिम्मेदारी बा कि पेड़ के बचावे के बाटे। अगर पेड़ बचा रहे ही तभी जीव जंतु बचा रही, तभी हम सबे बचब।
1: बिल्कुल सुमिरन हो
0: हाँ।
1: देखा पहले रहा ना कि भाई जौन प्रकृति के शोभा पौधा पेड़ बाटेन, भाई कुछ पेड़ जौन बहुत लाभ पहुँचावत हैं, भाई उनका ऐसा जोड़ दिया गया लोगन के धर्म से जोड़ दिया गया कि भाई ओका लोग कौनो भी तरह से नुकसान न पहुँचावे, बल्कि ओका रोज पानी दें।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल। भाई नीम के पेड़ जैसे
0: हाँ, बिल्कुल
1: पीपल के पेड़ जैसे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई देखा ऐसा ना है कि भाई उनमें कोनो विशेष बात रही, बस इतना रहा कि उनका एक ज्ञान रहा कि इन्हें पेड़न से हमेशा के एक सुखदायी जो ऑक्सीजन के वायु
0: हाँ,
1: बटे
0: हाँ।
1: ये हमेशा के मिले और पूरा निस्वार्थ भाव।
0: और चंद्र भैया आजो के जमाने में कम से कम नहीं तो आप देखे हुई कि तमाम तरह के जोन कार्यक्रम चले थे वृक्षारोपण कार्यक्रम, भाई ओहो के जोन मकसद बाटे वही बाटे कि ज्यादा ज्यादा पेड़ लगावा जाए।
1: बिल्कुल।
0: अब तमाम तरह के जोन सरकारों द्वारा चलावा जाता है, जोन सामाजिक मुहिम चलाई जाता है एक पेड़ माँ के नाम, या जोन सामाजिक वृक्षारोपण किया जाता
1: है,
0: चाहे वो
1: लोग जन्मदिन पर लगावत है,
0: विश्व पर्यावरण दिवस पे हो, विश्व पृथ्वी दिवस पे हो, भैया अरे लगाएवत इन पेड़। तो ई जोन पहल बाटे, ई पहल के सिर्फ पहल के रूप में न देखा जाए। भाई आपके पास समय बाटे, आपके पास जमीन बाटे तो जरूर लगावा। अब जैसे जोन समय चलत बाटे, भाई मानसून से पहले अगर पेड़ लगावे के बाटे तो ओकर तैयारी अभी कईला। अगर गड्ढा करे के बाटे, गड्ढा कई के उमन जोन दवा डाले के बाटे, दवा नहीं बाटे तो भैया जोन गोबर का खाद बा वो डाल द, उसे तैयारी तोहार हो ही जाए। जब एक बार बारिश शुरू हो जाए पौधा उमन लगाए द, बढ़िया ओकर विकास होए।
1: सुमिरन एक बात और
0: हाँ बताओ
1: कि भाई जवान ये ऋतु होती ना, निश्चित तौर पर भाई देखा ये संतुलन हमें जौन होते ना, ये भाई प्राकृतिक संतुलन से ही आवत है। यानी पेड़ पौधा जीव जंतु जौन बाटे उनमें आपस में सामंजस्य से ही बना बाटे
0: एकदम भैया।
1: अभी नायक भैया देखा कितनी गर्मी पड़े लागत है, बारिश जौन है असंतुलित होता है
0: बिल्कुल
1: हाँ। ठंडी के मौसम में अब देखा तो भैया सही से चार चार महीना बरसात हो चाहे गर्मी पड़े चाहे
0: ठंडी पड़े चाहे
1: हाँ, लेकिन अब इतना असंतुलन धीरे धीरे पैदा हो जात है कि भाई निश्चित तौर पर उसी पूरा जीव प्रभावित है।
0: एकदम भैया एकदम कही गए भैया।
1: भाई एक ध्यान दे पड़े सबके
0: हाँ।
1: सोचता है कि कुछ
0: गीत गाव नहीं हो
1: हाँ,
0: जाते
1: चला चलावत अल्पनाथ और साथी के भाई एक विराह सुन लिया जाए
0: हाँ हाँ बिल्कुल सुनवाई दे भैया।

0: देखो अल्पनाथ हो संघाती गाँव भाई विरह तो हो गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल हो गया। दूसरी चीज ये बात बाटे ना भैया,
0: हाँ
1: कि भैया जोन खेती किसानी का काम बाटे भाई, खेती किसानी का काम ऐसा बाटे कि मौसम के अनुसार किया जाए।
0: बिल्कुल
1: अब जैसे मौसम बाटे भाई, गर्मी ज्यादा बाटे तो भाई जोन फल सब्जी लगाए है भाई, उमन पानी सिंचाई की जरूरत बाटे, समय समय पर पानी द। कोशिश यही करे कि भैया संझा सवेरे द, संजा सवेरे देबा तो भाई पौधा के नुकसान ना होए।
0: बिल्कुल कहे सोते का धूप में भैया ना गर्म हो जाए तो
1: झुरा
0: जाता।
1: हाँ बिल्कुल। साथ ही साथ जो पशु प्राणी पाले आए उन्हों को ख्याल रखकर उन्हों के दाना पानी समय पे दे, ताजा पानी पियावा, जो हरा चारा काट के ले आवा रच के झुरा दे, तब उनके आगे डाला जैसे उनके भाई
0: कोनो
1: गर्मी
0: भी नुकसान ना हो,
1: कोई ना कोई नुकसान ना हो, लू ना लगे। अब देखो एक जरूरी चीज जरूर बाटे अपने पंचायत घर से संबंधित कि भाई जो ना अपन कार्यक्रम आवत है भाई, तरह तरह का आपके मन में प्रतिक्रिया होता, तरह तरह तो सुझाव होता आपके मन में, खेती किसानी से भी जुड़ा कई सवाल होता। तो भाई अगर कोनो तरह की चीज बाटे तो भाई अपन पसंद का एक व्हाट्सएप नंबर बाटे 800-4926-250। फिर से बोल देते 800-4926-250। इसके अलावा आपके सोशल मीडिया पर भी जोन आकाशवाणी प्रयागराज का पेज बांटे उमन कमेंट सेक्शन में जाए कि भाई अपन सवाल प्रतिक्रिया सुझाव कार्यक्रम संबंधी आप सभी दे सके थे, हम मौका अपने कार्यक्रम में भैया हम सभी शामिल कर।
0: बिल्कुल भैया देखा समय समय पे तरह तरह के भाई खेती बाड़ी से जानकारी जो चीज सुनाई जाते है वो कितना अच्छी लगी कैसे का उनका प्रतिक्रिया जरूर दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए चलिए बेला बांटे तो भाई पंचन से आज्ञा ली जाए, तो पंचों राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच सामने आएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देशभर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। यह युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा

0: अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
1: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
1: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट ओढ़ियार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
3: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
1: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में

0: विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे सफल बताया। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स बैठक की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमएसएमई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। बैठक में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेन्द्र चौधरी भी उपस्थित रहे। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच से सामने आएगा मंदिर चढ़वा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 14.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर दीप्ति विष्णु की वार्ता, योगः कर्मसु कौशलम्।
4: अस्वस्थो जनः धर्मसारं तपः साधयितुं न शक्यते, अतएव तपश्चरण समये भगवतीं पार्वतीं प्रति वटुवेशधारी

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सात्विक मिश्र के स्वर में सूरदास का ये भजन। आइए अंत में सुनते हैं इनके स्वर में मीराबाई का भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे सात्विक मिश्र। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। ये है कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजों में। गीतकार गुलजार, संगीतकार मदन मोहन, फिल्म का नाम मौसम।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

दलित एक पेंशन योजना है जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत। आवाज उदित नारायण की थी, फिल्म का नाम वीर जारा। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म धुरंधर से, अरिजीत सिंह और शाश्वत सचदेव की आवाजों में। गीत को लिखा है इरशाद खामिल ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं फहीम अहमद की आवाज में इरशाद कामिल का लिखा गीत। तनिष्क बागची का संगीत है, फिल्म का नाम सैयारा।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है अक्षय वट कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर से दीपक कुमार राय की बातचीत। बातचीत का विषय है बुजुर्गों के लिए लाभप्रद है योग। आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम अक्षय वट में। श्रोताओं, आप सबको पता है इस कार्यक्रम में हम बुजुर्ग लोगों के लिए उनकी समस्याओं पर बात करते हैं, उनकी जीवन प्रक्रियाओं पर बात करते हैं। आज हमने योग दिवस जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है और माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको देश के अलावा विदेशों में अनेक अनेक क्षेत्रों में इसे पहुंचाने का कार्य किया, इसको पब्लिसाइज किया और पूरा देश जो है 21 जून को योग दिवस की संकल्पना बनाने में जुटा हुआ है। योग वैसे तो हमारी भारतीय परंपरा का एक अहम हिस्सा रहा है। वर्तमान समय में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की समस्याओं से लड़ रहे हैं। हमने कोरोना का भी दौर देखा जो एक बड़ा ही भयावह दौर था। उस दौर में भी लोगों में ये बात हुई कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमारा बेटर होना चाहिए। हम ग्रोथ तो करते हैं जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है, जिससे हमारा आर्थिक पक्ष जुड़ा होता है, लेकिन क्या हम शारीरिक तौर पे भी उतनी ही ग्रोथ कर रहे हैं, मानसिक तौर पे उतनी ही ग्रोथ कर रहे हैं? इस पर बहुत लोगों ने अपना काम करना शुरू किया और सबने ये पाया कि योग उनके जीवन में एक सार्थक और सकारात्मक प्रभाव ला सकता है। आज हम इस कार्यक्रम में वृद्धावस्था में कौन कौन जो योग है वो किए जा सकते हैं, और या वैसे लोग जो उस एज की तरफ जा रहे हैं यानी 50 की सीमा को पार कर चुके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमने बुलाया है शहर की प्रख्यात योग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर को। आप कई वर्षों से लोगों को योग सिखा रही हैं और अलग अलग सेमिनार में अलग अलग मंचों पर आप योग के महत्व को बताती भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: सबसे पहला मेरा सवाल कि मैंने पहले ही बताया कि योग क्या होता है और इसमें सबसे पहले अगर कोई किसी के व्यक्ति के मन में योग का भाव आता है कि उसे योग करना चाहिए तो उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए?
2: जी हाँ, योग अर्थात जोड़, ये संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ही जोड़ है। योग शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति, आहार, व्यवहार, विचार, इन सब से आपका समावेश करना, जोड़ना, शरीर, मन और आत्मा, इन सबको एक लय में लाना, जोड़ना, परमात्मा की तरफ बढ़ना, अग्रसर होना ही योग का एक शाब्दिक अर्थ है। अमूमन योग को करने के लिए या यूं कहें कि ईश्वर से जुड़ने के लिए

0: ये सबसे पहले हमें योगासन का अभ्यास करना होता है, जिसमें योगासन में हम शारीरिक व्यायाम करके शरीर को स्थिर करते हैं, तत्पश्चात प्राणायाम करके श्वासों को स्थिर करते हैं। जब हम शरीर और श्वासों से स्थिर हो जाते हैं, तब हम बढ़ते हैं ध्यान की ओर, यानी कि इस शरीर को, इस श्वासों को परमात्मा से जोड़ना। हम उसी में ध्यानस्थ होते हैं, यही योग का संपूर्ण समावेश या योग की परिभाषा है। जैसा कि इस वर्ष 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें इस बार की थीम ही रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, 40-50 से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, तो इस बढ़ती उम्र को स्वस्थ रखने के लिए हम किस प्रकार के योग करें, कैसे प्राणायाम करें, जिससे बढ़ती उम्र में हमें इस प्राणायाम का, इस योगासन का लाभ मिले और शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकृति, मानसिक विकार दूर हो और मानसिक शांति मिल सके, इसके लिए हम ध्यान का भी अभ्यास करते हैं।
1: आपने बताया कि हम 12वां योग दिवस मना रहे हैं और इस बार का थीम भी है कि योगा फॉर एजिंग, यानी बढ़ती उम्र के साथ जो योग होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रमुख योग एवं प्राणायाम या आसन होते हैं जो कि एक व्यक्ति जब वो अपनी 50 की उम्र या 45 की उम्र या जो व्यक्ति 60 की उम्र पार कर चुका है उसको करने चाहिए जिससे उसके जीवन में मानसिक शांति, शारीरिक स्थिरता बनी रहे।
0: वैसे तो योग हर उम्र के लिए है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था सभी के लिए है, वृद्धावस्था के लिए भी है, लेकिन इस बार बात करें विशेष वृद्धावस्था की, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यदि उसमें पुरुष और महिलाओं को थोड़ा अलग किया जाए, तो महिलाओं में 40 के बाद 50 पहुँचते पहुँचते लगभग मीनोपॉज सिंड्रोम आने लगते हैं, यानी मासिक धर्म का बंद होना। ऐसे में उन महिलाओं को बहुत समस्या होती है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द बढ़ता है, अचानक से वजन बढ़ता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बहुत मानसिक अशांत रहती हैं। वहीं पुरुषों की बात करें तो एक जीवन भर जीविकोपार्जन के लिए जो अपनी दिनचर्या वो रखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपने खान पान को अस्त व्यस्त कर लेते हैं, अपनी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर लेते हैं, जिसका असर 40-50 वर्ष के बाद दिखाई देता है शरीर पर, जिसमें उनको मुख्य तौर पे अनिद्रा, नींद की समस्या आ जाती है, जोड़ों में समस्याएं आ जाती हैं, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, और यूं कहें कि एक स्मृति भ्रम या स्मृति का चले जाना, जिसको एक अल्जाइमर
1: मेमोरी
0: डिजीज,
1: अल्जाइमर
0: हाँ, जिसको हम मेमोरी से रिलेट करते हैं, अक्सर होता है कि सिर पे चश्मा रखे हैं और भूल गए चश्मा कहाँ है, मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हैं और फ़ोन कहाँ है, चाबी घर में रख कर भूल गए, कई बार तो घर के सदस्यों का नाम ही भूल जाते हैं। ये होता है जब उम्र बढ़ती है तो हमारी ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शनिंग की ओर जाता है, यानी कि जो ब्रेन को हमने जीवन भर इस्तेमाल किया है, शरीर को कार्यों में इस्तेमाल किया है, एक समय के बाद उस गति को धीमा कर देते हैं हम अपनी, ये कह के कि बुढ़ापा आ गया है। तो इस उम्र को स्वस्थ रखने के लिए हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, मानसिक के लिए ध्यान करते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो शरीर और मन के बीच का जो तालमेल है, सेतु है, वो है प्राणायाम, यानी हमारी श्वास प्रश्वास, श्वासों का लय अगर हम अच्छा रखते हैं, बेहतर ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे बॉडी में जितना भी सिस्टम है वो रेगुलेट होता है, मेटाबॉलिज्म स्टेबल रहता है, और कहीं ना कहीं जो एक बुढ़ापा यानी जो जरा की अवस्था है वो कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है। तो प्राणायाम, कुछ हल्के योगासन का अभ्यास करें तो हम कहीं ना कहीं वृद्धावस्था को एक खुशहाल वृद्धावस्था के रूप में जी सकते हैं।
1: आपने बार बार प्राणायाम और योगासन का जिक्र किया। तो आपने बताया कि अक्सर 40-50 की उम्र के बाद जो प्रमुख समस्याएं पुरुषों में और महिलाओं में देखने को आती हैं वो घुटने की समस्या आती है और स्पाइन की समस्या आती है। बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्हें स्पाइन में पेन हो रहा है, शायद पोस्चर की वजह से या बढ़ती उम्र की वजह से। और महिलाओं की तरफ से भी बहुत सारी कंप्लेन आती है कि उन्हें चलने में परेशानी हो रही है क्योंकि घुटने में दर्द हो रहा है और जो है स्पाइन की समस्या आ रही है। तो कौन से योग जो होते हैं अगर कोई व्यक्ति घर पे करना चाहे या किसी ट्रेनर के अंडर में करना चाहे तो वो कौन से योग हैं जिसको करना चाहिए जिससे इन समस्याओं पे नियंत्रण पाया जा
0: जी,
1: सके?
0: तो सबसे पहले तो कुछ खड़े होकर व्यायाम होता है, जिसमें ताड़ासन कर सकते हैं, दोनों पैरों का संतुलन बनाकर एड़ी को उठाकर शरीर को ऊपर लंबा खींचना है, इससे आपकी रीढ़ सुव्यवस्थित रहती है, टांगे मजबूत होती हैं, जो अक्सर वृद्धावस्था में बाथरूम में गिर जाते हैं, कूल्हे का फ्रैक्चर हो जाता है, वो पैरों का असंतुलन होना, पैरों की मजबूती में कमी आने की वजह से ये समस्या होती है। उसके अलावा आप कमर के लिए चक्की चालन आसन कर सकते हैं,

0: हस्तपादासन करते हैं और भुजंगासन कर सकते हैं। उष्ट्रासन किसी कुशल निर्देशन में ही करना चाहिए। ऐसे कुछ आसन हैं जो पेट के बल, पीठ के बल, पवन मुक्त आसन है जो कब्ज की समस्याओं के लिए उचित रहता है, उत्कट आसन है जिसको चेयर पोज भी कहते हैं, इससे जांघें मजबूत होती हैं जिससे घुटने की मांसपेशी मजबूत होती है, जो अमूमन उम्र में गठिया की समस्या होती है जोड़ों में। और कंधों के लिए स्कंद आसन, स्कंद चालन, ग्रीवा चालन, छोटे छोटे, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम का संपूर्ण समावेश। अगर हम इसका रोज अभ्यास करते हैं, छोटे छोटे जोड़ों को चलाना और आसन में थोड़ा स्थिर रहना, इससे हमारे शरीर में मजबूती आती है और बढ़ती उम्र की जो ऑर्थराइटिस या स्पाइन की या पोस्चर की प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याएं की बढ़ने की गति धीमी हो जाती है।
1: बहुत सारे लोग जो हैं बढ़ती उम्र के साथ अनेक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, तो वो क्या कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं? जब वो बीमारियां हो तब वो योगासन या वो वाला योग या कोई
0: जी
1: ऐसा प्राणायाम नहीं करना, क्या ऐसा कोई प्रतिबंध
0: हाँ,
1: है?
0: देखिए पहले तो मधुमेह है जिसमें
1: जी
0: हम लोग मंडूकासन करते हैं, इसी के साथ में जिसको मधुमेह होता है उसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो हाई बीपी में हमें हमेशा ऐसे आसन जो बहुत जुझारू है, जिनके लिए हमें बहुत बल लगाना पड़ता है, तो ऐसे आसन को वो अवॉइड करेंगे। साथ में कुछ प्राणायाम होते हैं जैसे भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम, ये हाई बीपी वाले लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर हाई होता है और अगर हम इसमें तीव्र क्रियाएं करते हैं तो वो ब्लड प्रेशर और शूट करता है। तो हमें इस बात का खासा ध्यान रखना है कि जब भी हम योगासन का अभ्यास करें या प्राणायाम का अभ्यास करें, हमें उसमें हमारा शरीर सुखद अवस्था को महसूस करना चाहिए। बहुत मस्तक पे अगर पसीना आ रहा है, इसका मतलब हम शरीर को ज़्यादा जुझा रहे हैं, हमें वो भी नहीं करना है। सांसें बहुत तेज़ हो रही हैं, हमें वो भी नहीं करना है। प्राणायाम का मतलब कि हमारी सांसें धीमी हो जाए। एक योगी की सांसें 1 मिनट में 5, 7, 10, 12 इतनी ही चलती हैं और एक सामान्य मनुष्य की सांसें कहें तो 20 से 25, 30 इतनी तेजी चलती हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास से हमें सांसों की दर को लंबा और धीमा करना है। तो जितनी सांसें धीमी आप लेंगे, गहरी लेंगे, उतनी ही हमारी आयु बढ़ती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है।
1: प्राणायाम या जब भी हम कोई योगासन करना है शुरू करते हैं या करना चाहते हैं, तो क्या कोई इसका समय निर्धारित है कि इसी
0: जी
1: समय चक्र में इसी ड्यूरेशन में किया जाना चाहिए?
0: जी योगासन करने के कुछ विशेष नियम हैं। सबसे पहले तो योगासन को सूर्योदय के साथ या सूर्योदय के पहले ही कर लेना चाहिए। दिन में किया हुआ योगासन शरीर को लाभ के जगह नुकसान देता है, तो योगासन को, प्राणायाम को आप सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कर सकते हैं। साथ ही जहाँ भी करें वो जगह स्वच्छ हो और वायुदार हो, यानी क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो। बंद कमरे में हम योगासन नहीं करेंगे, एसी में योगासन नहीं करेंगे। कोई कुशल निर्देशन हो, कोई योग गुरु हो, योगाचार्य हो, ट्रेनर हो, तो आप उनके सानिध्य में करिए। अगर आपको पालथी मारने में या नीचे बैठने में दिक्कत होती है, आप आराम से कुर्सी पर या अपने बिस्तर पे दीवार का सहारा लेकर भी योगासन कर सकते हैं। योगासन करते समय सदैव ढीले कपड़े पहनने चाहिए और खुली जगह, खुली रोशनी में ही प्राणायाम करना चाहिए। और एक खास बात है कि योगासन करने के बाद आप लगभग आधे से पौना घंटा स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर हमारी हीटअप होती है। अगर हम उसमें स्नान करते हैं तो वो एक अलग तरह का नुकसान देता है। और भोजन के पश्चात आप योगासन या प्राणायाम नहीं करेंगे। ये कुछ विशेष सावधानियां हैं जो योगासन के समय में आपको ध्यान रखना है।
1: ऐसे लोग जो कि 50 की उम्र की सीमा को पार कर चुके हैं या 55 की उम्र की सीमा को पार कर चुके हैं और उनका दफ्तर में, ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा समय बैठने में जाता है, ऐसे लोग भी तमाम तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके पास एक लिमिटेड टाइम है, वो टाइम नहीं निकाल
0: जी,
1: पा रहे
0: समय
1: योग
0: सीमा
1: और
0: भी
1: प्राणायाम?
0: कम है और
1: जी,
0: स्थान भी नहीं
1: तो
0: है,
1: उनको कौन
0: तो
1: कौन से प्रमुख आसन या
0: कुछ
1: प्राणायाम करने
0: आसन है जो
1: चाहिए?
0: आप कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं है, अपने हाथ को दाएं और बाएं करके आप सीधे करके स्ट्रेच कर सकते हैं। कुर्सी के पीछे का हत्था, जो पीठ बैकरेस्ट होता है, उसको पकड़ के आप अपने स्पाइन को ट्विस्ट कर सकते हैं। बैठे बैठे आप पवन मुक्तासन यानी एक घुटने को मोड़कर पेट की तरफ दबाना, फिर दूसरे पैर को मोड़कर पेट की तरफ दबाना, फिर दोनों टांगों को कुर्सी पर ही बैठे बैठे सामने फैलाकर दाएं और बाएं हाथों से अपने दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना, बाएं हाथ से दाएं पैर को छूना। आप ये कुछ चीज़ें हैं जो आप बॉडी स्ट्रेच कह सकते हैं, ये कर सकते हैं। और साथ में बैठे बैठे बहुत साधारण सा अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको किसी भी

0: अवस्था में किसी भी उम्र में किसी भी स्थान पर करने में शारीरिक के साथ मानसिक लाभ भी देता है। और साथ ही अनुलोम विलोम के साथ आप भ्रामरी प्राणायाम, ये दो प्राणायाम आपके लिए लाभदायक है।
1: धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर जी, आपने विस्तार से बताया कि किस उम्र में और जो हमारे खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं जो वृद्धावस्था में हैं या जो लोग ऐसे लोग हैं जो 50 या 55 साल की उम्र की सीमा में पहुंच चुके हैं, वैसे लोगों के लिए आपने बताया कि किस तरह के योग और आसन एवं प्राणायाम करने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता इस बातचीत को सुनेंगे वो उससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि योग से हमारा शरीर हमारा मन दोनों संतुलित होते हैं, स्वस्थ होते हैं और स्थिर होते हैं। और ये हम संकल्प लें कि हम सभी अपने जीवन में योग को आत्मसात करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए दीप्ति जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बुजुर्गों के लिए लाभप्रद है योग, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे अक्षयवट कार्यक्रम में डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर से दीपक कुमार राय की बातचीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार

0: रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास विकास और जन

0: कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट्स है।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country.
6: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर

0: कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उस

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। लेबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बराह रास्त अमन बातचीत का नया दौर मुलतवी हो गया है। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। और बैडमिंटन में कल चीन में मकाऊ ओपन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्मिता चलिया का मुकाबला पार्क गायून से होगा। अब खबरें तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संग मील की हैसियत रखता है, जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीबाती स्कीम है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है। उन्होंने कहा

0: कहा कि उमंगें हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
0: स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो उन्हें अफरादी कुवत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है। रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है, जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है। इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वजीर आजम ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवानों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वर्करों की बहबूद और मफादात की खातिर 4 अहम लेबर कोड नाफिज किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा में झारगोड़ा के लखनपुर में कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल से मुतालिक प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 25,000 करोड़ रुपए है। कोयले की वजारत ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मुल्क की पहली कमर्शियल सतह की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की सहूलत की तारीखी संगे मील की निशानदेही करता है। ये प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है। ये देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन योमिया अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोजा दौरे पर उड़ीसा पहुंची। खराब मौसमियाती सूरतहाल के पेश नज़र मयूरभंज जिले की डंडबोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से राय रंगपुर सड़क के जरिए सफर किया। अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सेटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिविजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस पहल से शुमाली उड़ीसा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मेयारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली बरस में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए थी, वो अंदरूनी मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नए एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस से नागपुर और विदर्भ खित्ते में दिफाई साजो सामान की तैयारी का इको निजाम मुस्तहकम होगा।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है, बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر پیدل چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور اے ایس چندروکر پر مشتمل ایک بینچ نے فیصلہ سنایا ہے کہ ایک شہری کا چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق بنیادی ہے اور اسے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت پر ترجیح دی جانی

0: चाहिए। एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमदोरफ्त के हक की गारंटी का एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आजादी समेत दीगर बुनियादी हकूक शामिल हैं। अदालत उज़्मा का यह फैसला मोटर गाड़ी के एक अफसोसनाक हादसे में मुआवजे के केस में सामने आया है, जहां एक बाप ने स्कूल ले जाते वक्त अपने 5 साल बेटे को खो दिया। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम शुमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरिक को नजरअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खत्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकेबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर आज़म ने 83 मरतबा से ज़्यादा शुमाल मशरक का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से सियाहत को फ़रोग़ मिला है और आमदनी के मकामी ज़राए से मुतालिक मौक़े बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए ईटानगर के डेरा नातुंग के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम क्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुमाल मशरिक की 8 रियासतें या अष्ट लक्ष्मी तरक्की की नई दास्तान लिख रही हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइके की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने अख़वाए मुत्तहदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त बेपनाह हैरत होती है जब उसका ही राक्षस उसे जकड़ लेता है। ये बातें अख़वाए मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कल कहीं। उन्होंने ये बातें उस वक्त कहीं जब पाकिस्तान और इस्लामी तआवुन तंजीम OIC ने अख़वाए मुत्तहदा हाई कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान और OIC के जरिए दिए गए हवाले का जवाब देने के लिए इस हक को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके मौजूदा वजीर दिफा सरकारी पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दों को पनाह देने, ट्रेनिंग देने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने की बात को बड़े फख्र से बयान करते हैं। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा था, है और रहेगा। वाहिद हल तलब मसला पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा और उनकी वापसी है। मोहतरमा सिंह ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास आबी मुआहदे का जिक्र करते हुए इसे फरसूदा करार दिया। इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले इस लड़ाई के सबब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत मुलतवी हो गई थी। ये जंगबंदी आज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफिजुल अमल हो गई है। अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि अमरीका और कतर के मुजाकरातकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता तय किया था। अहदेदार ने कहा कि आज सुबह सवेरे लड़ाई के बाद अब इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंगबंदी हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्ला ने फौरी तौर पर जंगबंदी के नफाज की तस्दीक नहीं की है। इससे पहले आज जनूबी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा आज चीन में जारी मकाऊ ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की किम

को सीधे गेम में और 21-16, 21-18 से हरा कर आखिरी चार में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला कल जनूबी कोरिया की पार गायुन से होगा। इससे पहले अश्मिता ने राउंड ऑफ 16 में अमरीका की शिखा जयसवाल को 22-20, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी जानी भारत की अनमोल खरब क्वार्टर फाइनल में चीन की चौथी पोजीशन की खिलाड़ी हैन क्विंसी से 14-21, 21-15, 21-13 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झरसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहदा में इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम कहकशां। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम कहकशां में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त एकता शुक्ला। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम साथ साथ चलेंगे गजलों, नज्मों और मधुर संगीत की उस खूबसूरत दुनिया में जहां पेशगी होगी मोहब्बत, याद, इंतज़ार, खुशी और ज़िंदगी के रंगों से सजी कुछ चुनिंदा गज़लों की, जहां शब्द सितारों की तरह चमकते हैं और सुर चांदनी बनकर मन को आलोकित करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहली गज़ल मेहंदी हसन की आवाज़ में।

रात की खामोशी और गज़लों का साथ सदियों पुराना है। जब दुनिया की हलचल थम जाती है तब गज़लें दिल की धड़कनों के साथ अपना रिश्ता साध लेती।

देती हैं। चांद तारों की महफिल में भी तन्हा है कई लोग, मुस्कुराते हुए चेहरे में भी छुपा दर्द बहुत है।

गज़ल की खूबसूरती और उसकी सादगी उसकी गहराई में छुपी होती है। कुछ अल्फाज, कुछ सुर और ढेर सारे एहसास, यही तो गज़ल की पहचान है। कभी प्यार का इजहार, कभी जुदाई का दर्द, कभी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ, गज़ल हर भाव को अपने अंदर समेट लेती है।

श्रोताओं, समय की रफ्तार का अंदाजा ही नहीं हुआ और हमारी ये गजलों की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। आशा है कि कहकशां की ये खूबसूरत महफिल आपके मन को सुकून और दिल की खुशी दे पाई होगी। विदा लेने से पहले कुछ पंक्तियाँ। महफिलें ख़त्म हो जाती हैं, फसाने नहीं होते। यादों के दीप कभी पुराने नहीं होते। गज़लों की यह कहकशां यूं ही सजती रहे, दिलों के रिश्ते कभी बेगाने नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मैं एकता शुक्ला आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि और सुनते रहिए आकाशवाणी पर कार्यक्रम कहकशां।

श्रोताओं, कार्यक्रम कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 8004926250।

अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं राजेंद्र तिवारी का लिखा नाटक अपने अपने चक्रव्यूह।

0: रुपए मिल गए?
1: जी मिल गए।
0: फिर कुछ कहना है?
1: विक्रम साहब, आप मेरी सेवा से संतुष्ट तो है ना?
0: तुमने तो हमें खुश कर दिया, बहुत अच्छी कंपनी दी। वाकई तुम 5,000 की हकदार हो।
1: शुक्रिया। आपने मेरा नाम नहीं पूछा?
0: नाम में क्या रखा है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम एक चुलबुली हसीन लड़की हो। नाश्ता किया?
1: जी।
0: जा रही हो?
1: आप कहें तो रुक जाऊं।
0: क्यों?
1: ठीक है, फिर कब आऊं?
0: कब आऊं? कभी नहीं।
1: क्या मतलब?
0: देखो मिस, विक्रम के लिए कोई लड़की दोबारा कॉल नहीं की जाती, चाहे वो कितनी ही हसीन हो। दरअसल मैं हर बार एक नई लड़की से मिलना पसंद करता हूँ। किसी लड़की से एक बार मिल लेने के बाद मुझे उसमें कुछ नया नहीं लगता है। हाँ, अगर तुम अपनी किसी खूबसूरत फ्रेंड को रिकमेंड करना चाहो।
1: सॉरी, मैं दलाल नहीं हूँ विक्रम साहब।
0: ओके, देन यू कैन गो।
1: ठीक है, जाती हूँ।
2: यार विक्रम,
0: हाँ
2: तू अब तक यहीं है, घर नहीं गया? कि मरवाएगा तू यार।
0: क्यों, क्या हो गया नलिन? इतना घबराया हुआ क्यों है तू?
2: अरे तेरे डैडी टॉर्च लेकर तुझे तलाश कर रहे हैं।
0: क्या?
2: अगर उन्हें पता चल गया कि तूने रात मेरे यहाँ गुजारी है तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। ये सवेरे से 2 बार फोन कर चुके हैं।
0: अरे तूने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना?
2: यार क्या बताता, बहुत गुस्से में थे वो। मुझ पर ऑर्डर दाग दिया कि मैं तुम्हें तलाश कर लाइन हाजिर करूं।
0: ठीक है ठीक है, चला जाता हूँ घर।
2: अरे यार तू यहां से फूट, अगर वो यहां आ गए तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा।
0: जा तो रहा हूँ यार, परेशान मत हो। नलिन, तू मेरे साथ चलेगा?
2: बाबा मेरी तो हिम्मत नहीं है, काफी मूड खराब था उनका। जा बेटा, आज तेरा टेम्परेचर उतर ही जाएगा।
0: वो इकलौते बेटे के डैडी हैं।
2: मेरे भाई मुझ पर तो रहम कर और यहां से निकल ले फौरन।
0: अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ यार।
3: विक्रम,
0: पापा आप
3: कल रात कहाँ थे?
0: कल रात एक दोस्त के घर में पार्टी थी।
3: मुझे पता चला है कि तुम अक्सर रात को घर नहीं लौटते, लौटते भी हो तो सुबह 5 बजे। आखिर कहाँ रहते हो तुम, क्या करते हो?
0: कभी कभी तो ऐसा होता है।
3: नहीं
0: पापा,
3: ऐसा अक्सर

0: पर होता है। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगी? तुमने कैशियर से 50,000 रुपए लिए थे?
1: हाँ लिया तो था,
0: किस लिए?
1: जरूरत थी दरअसल।
0: ऐसी जरूरतों पर लगाम लगाओ, वरना मुझे कैशियर से कहना पड़ेगा कि वो बगैर मेरी इजाजत के तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी ना दे। खामोश क्यों? जवाब दो।
1: क्या जवाब दूं पापा?
0: देखो विक्रम, मैंने तुम्हें एक सफल उद्योगपति बनाने के लिए तुम्हारी पढ़ाई पर पानी की तरह पैसा खर्च किया है। लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स कराया ताकि खून पसीने से बनाया इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मेरे वारिस के हाथों में सुरक्षित रहे। लेकिन तुमने कंपनी के किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं ली। मेरा हाथ बटाना तो दूर, कभी अपने चैम्बर में झांकने तक नहीं गए।
1: सॉरी पापा, अब ऐसा नहीं होगा, वादा करता हूँ। अब मैं रोज जाऊंगा, अपने चैम्बर में दिन भर रहूंगा, अब जो भी काम देंगे जी लगा कर करूंगा।
0: ऐसा वायदा तो तुम कई बार कर चुके हो। मां को ढाल बनाकर हमेशा तुमने मेरी इच्छाओं का अनादर किया है।
1: सॉरी पापा, आई एम अगेन सॉरी। अब मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
0: शिकायतों तो मेरे सुनने में और भी आई हैं, जिनके बारे में एक बाप अपने जवान बेटे से चर्चा नहीं कर सकता। शादी तुम करना नहीं चाहते, काम करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, आखिर तुम चाहते क्या?
1: प्लीज पापा, कहा ना मैं कल से कंपनी का काम करूंगा।
0: तुम ऐसा कर सके तो मुझे खुशी होगी, सुकून मिलेगा।
2: क्या बात है विक्रम?
1: कुछ नहीं माँ।
2: तेरे पापा क्या कह रहे थे?
1: कुछ भी तो नहीं माँ।
2: मैंने आते हुए खुद सुना था।
1: माँ तुम बेकार परेशान हो रही हो, बात कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ।
2: विक्रम, विक्रम मेरी बात तो सुन। वो चला गया। सुनिए, आप विक्रम को क्यों डांट रहे थे?
0: तुम्हारे लाड से विक्रम बिगड़ गया है माला। प्यार उसे मैं भी करता हूँ, पर इतना नहीं कि लड़का आवारा हो जाए।
2: वो आवारा है? अरे कैसे पिता है आप, खुद अपने बेटे को आवारा कहते हैं।
0: मैं नहीं, जमाना कहता है। जो लड़का रात भर बाजारू लड़कियों की सोबत करे, उन पर पैसा लुटाए, वो आवारा नहीं तो क्या है?
2: तो लोगों की बातें सुनकर उसे डांट रहे हैं आप?
0: मैं उसके सोए हुए जमीर को जगाने की कोशिश कर रहा था। काश वो अपना सही रास्ता तलाश कर पाता।
2: अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए तो, जैसा बेटा वैसा बाप, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है।

0: May I come in, sir?
1: Come in? Oh, wow. My God. What a beauty.
0: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
1: हाँ आइए ना, आइए आइए प्लीज. बाय द वे, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ.
0: जरूर कहिए.
1: बहुत सुंदर हैं आप.
0: जी.
1: आप शायद?
0: मेरा नाम चारू है.
1: ओह,
0: मैं सेठ साहब की सेक्रेटरी हूँ.
1: अच्छा, ऐसी तो आप सेक्रेटरी हैं. पापा ने कंपनी में चुन चुन कर लोगों को रखा है. बैठिए.
0: नो थैंक्स, इन लेटर पर दस्तखत होने हैं.
1: सेठ जी तो बाहर गए हैं.
0: उन्होंने कहा था कि ये लेटर्स आपसे दस्तखत कराकर आज ही डिस्पैच करा दिए जाएं.
1: हाँ लाइए. आपने टाइप किए हैं? आपके टाइप किए गए लेटर साइन करना तो सौभाग्य की बात है.
0: क्या मतलब?
1: हर बात का मतलब लगाना जरूरी है. आप जरा बैठिए तो सही.
0: कई लेटर हैं, थोड़ा जल्दी कर दें सर. तो
1: अरे कर तो रहा हूँ, आप लाई हैं इसलिए बगैर पढ़े कर रहा हूँ. हाँ
0: सो काइंड ऑफ यू सर. अभी लिफाफों में भरकर चपरासी से हेडपोस्ट ऑफिस भेजना है, काफी टाइम लगेगा.
1: अरे तो लिफाफे लेते आइए, मैं भर दूंगा.
0: आप शायद बुरा मान गए सर, दरअसल मैं काफी लेट हो जाऊंगी. लेट होने से कन्वेंस की प्रॉब्लम हो जाती है.
1: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
0: प्रगति नगर में.
1: नो प्रॉब्लम, मैं प्रगति नगर होकर ही घर जाता हूँ, आपको ड्रॉप कर दूंगा.
0: नहीं सर, मैं चली जाऊंगी. इस तरह क्यों देख रहे हैं सर?
1: मिस चारू, लगता है आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं है.
0: नहीं सर, कंपनी की तो मैं नौकर हूँ.
1: आप अपने एंगल से हर बात समझती हैं. ये लीजिए, मैंने साइन कर

0: दिए हैं लेटर।
1: थैंक यू सर।
0: सुनिए मिस चारू
1: जी,
0: संकोच ना कीजिएगा, मुझे आपको ड्रॉप कर खुशी होगी।
1: आप परेशान ना हो सर, ये मेरा डेली रूटीन है।
0: अच्छा, काश काश तुम्हारा रूटीन मेरा रूटीन बन पाता।
2: तो इन खूबसूरत बलाओं को अब दफ्तर में भी बुलाने लगे बेटा। समय तो ठीक ही है, दफ्तर के लोग जा चुके हैं, सन्नाटा ही सन्नाटा है।
0: नलिन,
2: कौन है ये इंद्रलोक की अप्सरा?
0: अबे चुप, पापा की सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी।
2: तब तो तेरी दाल गलने से रही।
0: लगता है ये वैसी लड़की नहीं है नलिन।
2: कैसी?
0: जैसी लड़कियां हमारे पास आती हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग लगती है।
2: लगता है काफी इम्प्रेस कर दिया है इस लड़की ने, चीज ही ऐसी है।
0: हाँ, वो नाक पर मक्खी तक तो बैठने नहीं देती। वैसे यार, मैं इस लड़की के बारे में काफी सीरियस हूँ।
2: शादी करने का इरादा है?

0: तो इन खूबसूरत बलाओं को अब दफ्तर में भी बुलाने लगे बेटा। आ समय तो ठीक ही है, दफ्तर के लोग जा चुके हैं, सन्नाटा ही सन्नाटा है।
1: नलिन,
0: कौन है ये इंद्रलोक की अप्सरा?
1: अबे चुप, पापा की सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी।
0: तब तो तेरी दाल गलने से रही। कैसी?
1: लगता है ये वैसी लड़की नहीं है नलिन, जैसी लड़कियां हमारे पास आती हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग लगती है।
0: लगता है काफी इम्प्रेस कर दिया है इस लड़की ने, चीज ही ऐसी है।
1: हाँ, वो नाक पर मक्खी तक तो बैठने नहीं देती। वैसे यार, मैं इस लड़की के बारे में काफी सीरियस हूं।
0: शादी करने का इरादा है?
1: लगता है वक्त आ गया।
0: तब तो तू गया काम से। अबे आज मैंने तेरे लिए नया शो अरेंज किया है।
1: सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा।
0: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तेरे तो पंख ही काट दिए गए हैं। अब रात में तू घर में रहेगा और दिन में अपनी कंपनी के दफ्तर में। तेरी किस्मत में नहीं है उसका दीदार। चल, मैं ही रहूंगा आज का हीरो।
1: यार नलिन, उसे दिन में अरेंज नहीं कर सकता।
0: दिन में? अरे दिन में क्या होगा?
1: दिन में मैटनी शो चलेगा और क्या।
0: तू हेरा फेरी से कभी बात नहीं आएगा। अब चलता हूं, आज तो मेरा ही नाइट शो होगा।
1: नलिन, एक मिनट
0: अब क्या है?
1: यार, मेरा एक काम करेगा।
0: हाँ बता।
1: इस लड़की का नाम चारू है, प्रगति नगर में रहती है। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए।
0: हाँ, मिल जाएगी यार, कल इसका इतिहास भूगोल सब बता दूंगा। और कुछ?
1: बस बस इतना ही काफी है।
0: तो ठीक है, कल इसी वक्त आऊंगा पूरी रिपोर्ट के साथ।
1: अरे 7 बज गए।
2: अरे 7 बज गए, चारू अब तक नहीं आई।
3: तो जाकर देखो ना, कैसे बाप हो।
2: अरे कहाँ देखूं, उसका दफ्तर कोई यहां है?
3: मेरा तो जी घबरा रहा है, पता नहीं कब आएगी मेरी चारू।
4: लो, मैं आ गई माँ, तुमने
3: चारू,
4: याद किया।
3: और मैं तुम्हारे सामने हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी, तेरे पापा कितने परेशान थे।
4: सॉरी पापा।
2: पर बेटी, इतनी देर तो कभी नहीं हुई।
3: आज कुछ जरूरी लेटर टाइप करके पोस्ट करने थे। सेठ जी बाहर गए हैं, उनके बेटे से लेटर साइन कराने थे, उसने बहुत देर लगा दी। बेटा पिता की तरह नहीं लगता पापा।
2: बड़े लोग हैं, उनके तौर तरीके अजीब होते हैं।
3: उसका बात करने का ढंग मुझे पसंद नहीं आया। रईसों के संस्कारहीन लड़कों से वो मुझे अलग नहीं लगा। हो सकता है मेरा सोचना गलत हो।
5: लेकिन चारू, तू तो सेठ जी की सेक्रेटरी है ना।
2: और सेठ जी तो देवता है, तू तो उनके साथ ही काम करती है बेटी।
3: सेठ जी तो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं।
2: शोभा, अब चारू को चाय नाश्ता दोगी या नहीं?
5: अरे अभी लाती हूँ
2: बेटी,
3: जी।
2: सेठ जी के सम्मान का हमेशा ध्यान रखना।
3: जी
2: बिरले लोग ही इतने महान होते हैं। व्यापार में घाटे के बाद मैं तो डूब ही गया था। सेठ जी से सिर्फ क्लब की जान पहचान थी। सेठ जी ने मेरी इज्जत बचा ली, मेरा कर्जा चुकाया, घर चलाने के लिए तुझे अपनी कंपनी में रखा। उनका हमारे परिवार पर बहुत एहसान है बेटे।
3: मैं जानती हूँ पापा, वो देवता है।
5: चारू।
3: हाँ माँ।
5: चारू, टेबल पर नाश्ता लगा दिया है।
3: अच्छा माँ।
5: जा बेटी, कपड़े बदल और नाश्ता कर ले।
3: ठीक है माँ।
5: सुनो।
2: क्या
5: सोचने लगे?
2: सोच रहा था कोई अच्छा लड़का मिल जाता तो चारू की शादी कर देता।
5: परेश के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
2: अच्छा लड़का है, चारू के साथ पढ़ा है, अब तो बैंक में लग भी गया है।
5: तो उसके घर वालों से बात चलाओ ना।
2: ठीक है, मैं बात करूंगा।
5: एक भेद की बात बताऊं?
2: क्या?
5: चारू भी उसे पसंद करती है।
2: मुझे पता है, दोनों अक्सर मिलते हैं।
6: माला, अरे कहाँ हो भाई?
7: अरे आप कब आए?
6: बस चला आ रहा हूं, सब ठीक तो है ना?
7: 2 दिन को कह के गए थे, पूरा हफ्ता लगा दिया आपने।
6: अब तो हम सामने हैं।
7: बड़े खुश नजर आ रहे हो, कुछ खास बात है क्या?
6: तुम्हें बधाई देने का मन कर रहा।
7: बधाई किस लिए?
6: मुझे फोन पर मैंने

0: जिसने बताया कि विक्रम रोज टाइम पर फैक्ट्री पहुंच जाता है और मन लगा कर काम भी खूब देख रहा है।
1: हाँ
0: पूरा दफ्तर संभाल लिया उसने। है कहाँ?
1: अरे वो तो कब से दफ्तर चला गया, आखिर बेटा मेरा है ना।
0: सिर्फ तुम्हारा ही?
1: नहीं नहीं भाई, तुम्हारा भी बेटा है बस।
0: ये बात हुई। क्या बात है, तुम भी बहुत खुश नजर आ रही हो आज।
1: मेरे पास भी एक खुशखबरी है।
0: अच्छा, तुम्हारे पास भी है?
1: हाँ।
0: क्या खुशखबरी है?
1: विक्रम शादी के लिए तैयार हो गया है।
0: सच? कहा
1: हाँ।
0: क्या उसने तुमसे?
1: हाँ, उसने खुद मुझसे कहा कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है।
0: अच्छा, मगर कौन खुश नसीब लड़की है भाई?
1: तुम्हारे दफ्तर में ही काम करती है।
0: मेरे दफ्तर में?
1: हाँ, उसने नाम भी बताया था। क्या तो नाम था, हाँ याद आया, चारू, चारू नाम है उसका।
0: चारू? अरे
1: हाँ।
0: चारू तो मेरी सेक्रेटरी है। लेकिन
1: लेकिन क्या?
0: देखो माला, चारू वंशीधर जी की बेटी है।
1: हाँ
0: हाँ, वैसे वंशीधर जी का भी कभी ठीक ठाक बिजनेस था, लेकिन लोगों ने उनका बिजनेस ठप करा दिया था।
1: अच्छा,
0: चारू को मैंने ही नौकरी पर रखा था ताकि उन लोगों की कुछ मदद हो जाए, मगर
1: अरे अब मगर वगर छोड़ो, विक्रम शादी करेगा तो सिर्फ चारू से।
0: वैसे चारू बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर है, संस्कारवान है, लेकिन समाज में हमारी हैसियत है माला, क्या कहेंगे लोग?
1: अब समाज को गोली मारो, हमें अपने बेटे की पसंद देखनी है। अब तुम उसके पिता से बात कर लो बस।
0: करूंगा, तुम कहती है तो जरूर करूंगा। वैसे एक बात है माला, हमें अपने बेटे की पसंद की तारीफ करनी होगी।
1: भूल मत जाना, जल्दी बात करनी है समझे। मैंने विक्रम से वादा कर लिया है कि शादी तेरी पसंद से होगी।
0: ठीक है, विक्रम जो चाहता है वही होगा। मैं आज ही वंशीधर जी से बात करूंगा चारू के बारे में।
1: ठीक है।
2: वंशीधर जी, मैं आज चारू के बारे में कुछ बात करने आया हूँ आपसे। बहुत ही अच्छी लड़की है वो।
3: अरे चारू तो आप ही की बेटी है सेठ जी, उस पर आपका पूरा हक है।
2: अच्छा, वो आपका बेटा क्या कर रहा है?
3: बेटे ने तो छोटा मोटा कारोबार शुरू किया है और उसका काम अब चलने भी लगा है। क्या बात है सेठ जी, आप कुछ सोच रहे हैं क्या?
2: हाँ वंशीधर जी, दरअसल बात यह है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो संकोचवश कह नहीं पा रहा हूँ।
3: कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो हुक्म कीजिए सेठ जी।
4: चाय लीजिए।
2: अरे आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया?
4: सुदामा के घर भगवान पधारे हैं, बड़े भाग हैं हमारे।
3: वैसे आप बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं सेठ जी।
4: यह चारू की बात लड़के के पिता से करके आए हैं
3: और उन्होंने रिश्ता करने के लिए हामी भी भर दी है।
2: क्या
3: क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
3: अरे, क्या हुआ सेठ जी?
4: अरे आपके हाथ से लड्डू क्यों गिर गया?
2: वंशीधर जी, दरअसल मैं चारू को अपने घर के लक्ष्मी बनाना चाहता था। उसे अपने इकलौते बेटे के लिए आपसे मांगने आया था। आज मैं अपनी पत्नी को वचन दे आया हूं।
3: ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी?
2: ठीक कह रहा हूं वंशीधर जी।
3: अरे कहां आप और कहां मैं, मेरी औकात।
2: औकात की बात मत करिए वंशीधर जी, आप मुझसे बड़े हैं, मैं मांगने आया हूं। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है।
4: सेठ जी, चारू का भाग्य है कि इतने ऊंचे घराने में बात चली है, लेकिन उन लोगों से क्या कहा जाएगा?
3: बात तो उनसे हो चुकी है।
2: किससे हो चुकी है? कौन है आखिर वो लोग?
3: दरअसल सेठ जी, आज मैं परेश के पिताजी से बात करके आया हूं। बहुत अच्छा लड़का है, बैंक में काम करता है।
2: वंशीधर जी, सिर्फ बात ही हुई है ना, कोई रस्म तो नहीं हुई?
3: नहीं, रस्म तो नहीं हुई।
2: तो फिर मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। मेरा बेटा सिवाय चारू के और किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। देखिए, अभी ही आपने कहा है चारू पर मेरा पूरा हक है।
3: ठीक है सेठ जी, मैं चारू से भी बात कर लूं।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे चारू पर पूरा विश्वास है, वे मेरी बात कभी नहीं डालेगी।
3: बात तो मैं भी नहीं डाल सकता, आपके परिवार से रिश्ता होना गौरव की बात है।
2: देखिए वंशीधर जी, मैंने अपनी बात

0: कह दी, अब मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अगर चारू मेरी बहू बन सकी तो मुझे बेहद खुशी होगी।
1: जो आप चाहेंगे हम वही करेंगे सेठ जी।
0: अच्छा तो अब इजाजत दीजिए, एक और जरूरी काम मुझे फौरन निपटाना है, चलता हूँ।
1: अच्छा नमस्कार।
2: नमस्ते। अब परेश का क्या होगा?
1: कुछ भी हो, अब ये रिश्ता तो मानना ही होगा, सेठ जी की बात तो रखनी ही होगी। ये फैसला गलत है चारू।
2: फिर भी ये एक फैसला तो है परेश, इस फैसले को हम नहीं बदल सकते।
1: नहीं चारू नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
2: होगा ऐसा ही परेश, दो दिन बाद सेठ जसवंत के बेटे से मेरी सगाई है।
1: और तुम तैयार हो सगाई के लिए?
2: तुम हम लोगों की मजबूरी क्यों नहीं समझते? तुम्हें तो हमारे घर के बारे में सब कुछ पता है परेश।
1: तुम इतनी मजबूर हो गई कि इस अन्याय का विरोध तक नहीं कर सकती? चारू चारू ये आत्महत्या है, मैं तुम्हें इस तरह आत्महत्या नहीं करने दूंगा।
2: ये मेरे पिता की इच्छा है जिसे मैंने आदेश मानकर स्वीकार कर लिया है।
1: लेकिन मैं विरोध करूंगा।
2: किसका? मेरे विवश पिता का, मेरे मजबूर परिवार का?
1: पत्थर दिल है वो पिता जो अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट रहे हैं।
2: चुप रहो परेश, चुप रहो। काश तुमने उन्हें उस वक्त देखा होता जब उन्होंने ये फैसला लिया। समझ सकते हो उनका दर्द? उनकी आंखों में उस वक्त आंसुओं में डूबी एक बेबस याचना थी, उनके कांपते हुए शब्दों में एक अपराध बोध था। ये फैसला उन्होंने छाती पर पत्थर रखकर किया है परेश, पत्थर रखकर।
1: और इस फैसले से मेरा क्या हाल होगा, कभी सोचा है तुमने? नहीं चारू नहीं, तुम भले ही चुप रहो लेकिन मैं चीख चीख कर विरोध करूंगा।
2: तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे परेश जिससे हमारे प्रेम का अपमान हो। प्रेम किया है तो बिना मोल के बिक जाओ, इसी में प्रेम की जीत है।
1: चारू अपने साथ इतना जुल्म मत करो, मुझे समझा रही हो? तुम्हारी आंखों में भरे आंसू फूट पड़ने को उमड़ रहे हैं, तुम अपना दर्द अपने भीतर पी रही हो। ये जुल्म है चारू, जुल्म करना है तो करो, मुझ पर करो, अपने आप पर मत करो चारू, मत करो।
2: परेश मेरी चेतना को इतना मत झकझोरो कि मेरे संयम का बांध टूट जाए, जिसमें मेरी मर्यादाएं, मेरी शालीनता तिनकों की तरह बह जाए।
1: मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता।
2: नियति पर किसी का वश नहीं चलता परेश, किसी का वश नहीं चलता। अब वो बिंदु आ गया है जहां से हमारे रास्ते अलग होते हैं।
1: नहीं चारू, हमारे रास्ते एक थे, एक रहेंगे।
2: तुम बार बार मेरी पीड़ा मत कुरेदो। अगर तुमने सचमुच प्रेम किया तो मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़खड़ाते वजूद को सहारा दो, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ परेश, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। बस यही कहने के लिए तुम्हें यहां बुलाया था परेश।
1: ये तुम्हारा आखिरी फैसला है चारू?
2: हाँ।
1: तो ठीक है, चलता हूं अब। ईश्वर तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे, यही मेरी शुभकामना है।
2: मुझे माफ कर देना परेश।
1: इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है चारू, यही तो है नियति का खेल, जो हमारे जैसे कितने ही स्वप्नदर्शियों को कठोर चट्टानों के धरातल पर ला पटकता है। अच्छा अलविदा।

0: आइए सेठ जी, तशरीफ रखिए प्लीज।
1: अचानक कैसे याद किया डॉक्टर? सब खैरियत तो है?
0: दरअसल विक्रम के बारे में बात करनी थी।
1: क्या हुआ विक्रम को? वो सवेरे तो फैक्ट्री चला गया।
0: मिस्टर जसवंत, मैंने विक्रम को एडमिट कर लिया है।
1: क्या? एडमिट? क्यों? किस लिए? क्या हुआ है उसे? जल्दी बताओ डॉक्टर।
0: उसे तेज बुखार है।
1: बुखार? लेकिन सवेरे तो वो
0: पुराना बुखार है, लगता है काफी दिन से आ रहा है। वो बुखार उतारने की गोलियां खाता रहा है। मैंने उसके सारे टेस्ट कराए, टेस्ट में और तो कुछ नहीं निकला, मगर
1: मगर क्या?
0: वो HIV पॉजिटिव है। टेस्ट रिपोर्ट कहती है उसे एड्स हो गया है। ये बुखार भी इसीलिए है।
1: क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। ये टेस्ट गलत है।
0: ये सच है। उसने खुद स्वीकार किया है कि उसके संबंध बाजारू औरतों से थे। असुरक्षित यौन संबंधों से ही ये भयंकर रोग होता है।
1: हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया डॉक्टर, मैं
0: मिस्टर
1: बर्बाद हो गया। अरे
0: जसवंत, हौसला रखिए, धीरज रखिए।
1: मैं क्या करूं डॉक्टर? धीरज धीरज कैसे रखूं? विक्रम मेरा इकलौता बेटा है, मेरे सारे सपने टूट गए, चूर चूर हो गए। क्या करूं मैं डॉक्टर, अब क्या करूं?
0: आप फिलहाल तो इन दवाओं का इंतजाम कीजिए। जहां भी मिले, जैसे ही मिले, इन्हें फौरन मंगाइए। बाकी सब ऊपर वाले पर निर्भर है।
1: जाता हूं, दवाओं का इंतजाम करता हूं, अभी भिजवाता हूं। नहीं वंशीधर जी, अब विक्रम की चारू से कभी नहीं होगी सगाई। ये शादी अब कभी नहीं हो सकती।
2: वाह सेठ जी वाह, आखिर उड़ा दी ना एक गरीब की इज्जत की धज्जियां। मैंने पहले ही कहा था आपसे, मना किया था आपको, कहां आप कहां मैं, लेकिन आप नहीं माने। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी।
1: कह लीजिए वंशीधर जी, कह लीजिए, जितना भला बुरा कह सकते हो कह लीजिए। मैंने मजबूरी में सीने पर पत्थर रखकर ये फैसला किया है, इसी में हमारी आपकी चारू की भलाई है।
2: भलाई? अरे रहने दीजिए सेठ जी, आपने तो मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, आपने तो बीच भंवर में लाकर डुबो दिया। चलो मान लिया कि मैं आपके बराबर की हैसियत का नहीं था, लेकिन चारू ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों उसकी झोली में अंगार भर दिए आपने?
1: चुप रहिए वंशीधर जी, बोलते ही चले जा रहे हैं। अरे मेरा दर्द जानते हैं आप, एक ऐसे मजबूर बाप की पीड़ा जिसका इकलौता बेटा वंशीधर जी, आपने जानने की कोशिश नहीं की। मुझे फैसला क्यों करना पड़ा, क्यों इस शादी से इनकार करना पड़ा?
2: ठीक है, बताइए बताइए ना, क्यों किया आपने ऐसा फैसला?
1: चारू की वजह से। मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। उस फूल जैसी बच्ची का जीवन बर्बाद होने से बचाने के लिए फैसला किया है मैंने।
2: अब बहाने मत बनाइए, शादी होने से चारू का जीवन बर्बाद हो जाता क्या?
1: हाँ वंशीधर जी, हो जाता, क्योंकि विक्रम को एड्स हो चुका है।
2: एड्स?
1: ये सब होनी के खेल है वंशीधर जी, होनी के खेल। जो होना है वही होता है। दरअसल हम सब अपने अपने चक्रव्यूह में फंसे हैं, व्यूह के दायरों में कैद, नियति के हाथों के खिलौने। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, चारू का विवाह जरूर होगा। वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। उसका विवाह मैं खुद धूमधाम से करूंगा। उसकी शादी मेरे घर से होगी, मेरे घर से होगी।

अभी आप सुन रहे थे राजन तिवारी का लिखा नाटक अपने अपने चक्र व्यूह। प्रतिभागी कलाकार थे मीनल मिश्रा, सुनील श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, मधुर श्रीवास्तव, प्रतिमा वर्मा, जगदीप वर्मा, नंदिनी चटर्जी, रूपा सहाय, अजय चक्रवर्ती और शिबू। प्रस्तुति मधुर श्रीवास्तव की थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं श्रीमती कमला बोस। आइए सुनते हैं इनके स्वर में राग विहाग में ख्याल। विलंबित रचना एक ताल में है। बोल हैं कैसे सुख सुवे ने दिया। द्रुत रचना तीन ताल में। बोल है बाट निहारू आवन की। तबले पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार भट्ट। हारमोनियम पर शमशाद अहमद खां।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कमला बोस का राग मारुबेहाग में ख्याल। तबले पर संगत कर रहे थे श्रवण कुमार भट्ट, हारमोनियम पर शमशाद अहमद खां। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया

0: के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency NTA today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan at the United Nations as it